सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह की इस सुनहरी सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.88 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना। दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि

भगवान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन। नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति हैं। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियाँ और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक बांसुरी मंजरी की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे सुबह 9 बजे हमारे अगले एक खास और रंगों से भरे कार्यक्रम घूमर की ओर, क्योंकि साथियों राजस्थान की संस्कृति में घूमर केवल एक लोक नृत्य नहीं बल्कि नारी की खुशी, सम्मान और परंपरा का सुंदर प्रतीक है। इसी परंपरा और नारी शक्ति को समर्पित है हमारा यह विशेष कार्यक्रम घूमर, जहां महिलाओं से जुड़ी बातें, उनकी प्रतिभा, अनुभव और जीवन की प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाई जाती है। इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 9:30 पर। तो श्रोता साथियों जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का। कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम।

0: आज के सुविचार।
1: उसके भोजन से फल संग्रहित होता है, क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। राधे राधे। भय, भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेके ही जन्म लेता है। तो इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जन्म लेते हैं? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जाने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने को प्रेरित करता है। किंतु यह भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना होगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं, अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए। और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। राधे राधे।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल थकी जरूर बोने में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा करे हैं। तो आओ बोना ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास की असली पहचान है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो घणे मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बुनो अमे अमारे टेम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। भाई बुनो आज अमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है पारंपरिक बीज वागड़नी खेती नी विरासत आत्मनिर्भरता ने बेहतर उत्पादन नो आधार है। अणा विषय माते घणा कानी अमारी आप तक की बात रहेगा पण कार्यक्रम शुरू करा इने पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे कर आपड़ी वाते। भाई बोनो आप हमरते रहजो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: गीत तो आयशो पुरुन और गीत बात एक गीत फिरी आप सबनों घने मन स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बहनों गीते के पहले आपने विषय बताड़ू तू कि आज आप बातचीत करवा वाला हूँ पारंपरिक बीज वगरनी खेती विरासत आत्मनिर्भरता ने बेहतर उत्पादन नु आधार है अना विषय माते जानकारी अलवा बल्ले आज आप कार्यक्रम तक जुड़ी रही मनीष जी तो सब तक पहले अपने हमरी लड़ना बात है मोरे कर अपनी बात है। सर नमस्कार।
1: नमस्ते अंजलि जी।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम खेतीवाड़ी से जुड़ रहे हैं और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है पारंपरिक बीज प्रबंधन को लेकर। हम देखते हैं कि बीज का प्रबंधन करना वागड़ जो क्षेत्र है उसकी खेती की विरासत है आत्मनिर्भरता है और बेहतर उत्पादन का आधार है। तो सबसे पहले आप हम यही बताइए कि आदिवासी क्षेत्र में पारंपरिक बीजों का प्रबंधन कैसे किया जाता है और इसका क्या महत्व है।
1: तो किसान भाइयों अगर हम हमारे पारंपरिक बीज की बात करें तो वागड़ अंचल का हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है यहाँ खेती की जो परंपरा है वो आदिकाल से चली आ रही है।
0: बिल्कुल।
1: और प्रकृति आधारित जीवन शैली का जो केंद्र है उसको हम खेती और इससे जुड़ी हुई चीजें मानते हैं। तो यहाँ के किसानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अनुभव परंपरागत ज्ञान और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर खेती की ऐसी प्रणालियां विकसित की जो कम संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन देने में सक्षम है।
0: बिल्कुल।
1: इन प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जिसे हम खेती की आत्मा कह सकते हैं वो है हमारा पारंपरिक बीज। क्योंकि बीज खेती के लिए एक आदान या वस्तु नहीं है बल्कि ये हमारे किसान साथियों के लिए उनकी स्वतंत्रता उनकी खाद्य सुरक्षा उनकी संस्कृति और खेती के ज्ञान का प्रतीक है।
0: बिल्कुल।
1: तो किसान भाइयों हम कह सकते हैं कि जिस किसान के पास अपना बीज होता है वो खेती के लिए बाजार पर बहुत कम निर्भर रहता है।
0: जी जी सर।
1: इसी के उल्टे यदि हम बात करें तो किसान हर साल बीज खरीदने के लिए बाजार की तरफ देखते हैं। कई बार बीज के मिलने में जो देरी होती है उससे उनकी फसल प्रभावित होती है।
0: बिल्कुल।
1: और बीज के साथ कई सारे बाहरी संसाधनों पर उनकी निर्भरता बढ़ती चली जाती है।
0: जी जी।
1: तो आज अगर खेती की लागत बढ़ रही है इसमें उर्वरक कीटनाशक मजदूरी और सिंचाई इनके खर्च जो किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं यहाँ पे ऐसे समय में अपने खेत का शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण बीज यदि वो तैयार करें तो इससे कई तरह से हमारी खेती में लागत को कम करने में सहायता मिलेगी।
0: बिल्कुल सर।
1: और आत्मनिर्भर खेती की दिशा में ये हमारा पहला और महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से अगर किसान के पास खुद का अपना बीज होता है तो उसकी बाजार की निर्भरता कम हो जाती है और अगर उसके पास अपना बीज नहीं होता है तो किस तरीके से खर्च बढ़ता है और उसके सामने चुनौती आ जाती है। यही अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वागड़ क्षेत्र के किसान किस तरीके से बीजों का प्रबंधन करते हैं।
1: तो देखिए किसान भाइयों जैसे कि कहा भी जाता है जैसा बीज वैसी फसल। तो खेती की सफलता का पहला आधार अच्छा बीज।
0: बिल्कुल।
1: यदि बीज स्वस्थ है शुद्ध है और इसी के साथ वो मजबूत है तो फसल भी अच्छी होगी।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए किसान पूरे वर्ष अच्छी उपज की उम्मीद लेकर खेती करते हैं और हमारे वागड़ क्षेत्र की जो मुख्य खेती है वो वर्षा आधारित खेती है यानी कि वो बारिश के पानी पर निर्भर करती है।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसी स्थिति में यदि बीज कमजोर या खराब हुआ तो हमारा खर्च हमारी मेहनत दोनों जो है प्रभावित होते हैं। तो किसान साथियों यदि बीज प्रबंधन की बात करें यानी कि बीज की व्यवस्था की बात करें
0: जी जी।
1: तो वागड़ की जो पारंपरिक बीज की संस्कृति है इसमें ज्यादातर जो फसल के लिए लगने वाला बीज होता है वो किसान पहले से अपने घरों में रखते हैं। तो बागड़ के गांव में बीज संरक्षण कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि ये एक सामुदायिक संस्कृति का हिस्सा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कई बार या तो हमारे पास बीज कम है या किसी तरह का बीज यदि हमारे पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसान एक दूसरे के साथ बीजों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय करते हैं, जिसके बदले में कहीं कोई पैसा नहीं देना होता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो गांव के दूसरे किसान उनको बीज उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार बीज सामाजिक सहयोग और सामुदायिक सुरक्षा का माध्यम भी है।
0: बिल्कुल।
1: बीज के चयन का कार्य बहुत महत्व रखता है। तो कटाई के समय खेत की जो सबसे अच्छे पौधे होते हैं उनको किसान चिन्हित करते हैं। इसमें जो बड़े दाने वाले, जैसे हम मक्का की बात करें तो बड़े भुट्टे या अन्य दाल वर्गीय फसलों की बात करें तो उड़द, मूंग, तुअर, इनमें जो सबसे बड़े दाने होते हैं और ज्यादा फली वाला जो पौधा होता है उनका चयन किया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इस प्रकार के पौधों से प्राप्त दाने जो हम बीज के लिए रखते हैं और अगली बुवाई में उनका उपयोग करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: बीज चयन में सबसे महत्वपूर्ण यदि हम भूमिका की बात करें तो किसान साथियों, बीज चयन में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
0: जी जी।
1: वे बीजों की कटाई छटाई करने से लेकर सफाई, सुखाने, संरक्षण और भंडारण जैसे महत्वपूर्ण काम को पूरे साल संभालती हैं। परिवारों में बीज संरक्षण की जिम्मेदारी पूरी तरह से महिलाओं के पास होती है,
0: जी जी,
1: ये कहना कोई अतिशोक्ति नहीं होगा। और यही कारण है कि ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक बीज का ज्ञान के जीवंत भंडार के रूप में माना जाता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि हमारे वागड़ क्षेत्र के किसान भाई बहन जो हैं, वो पारंपरिक बीज का प्रबंधन कैसे करते हैं और साथ ही महिलाओं की इसमें क्या भूमिका है। तो सर, अब यही मैं जानना चाहूंगी कि बीज के चयन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके लिए कौन कौन सी विशेष बातों का हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान रखने की जरूरत होती है।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो किसान साथियों, अगर हम बीज के चयन की बात करें तो खेत से ही शुरू होता है हमारे बीजों का उत्पादन। अक्सर किसान ये मानते हैं कि बीज उत्पादन फसल कटाई के समय शुरू होता है।
0: बिल्कुल।
1: जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो बीज उत्पादन की प्रक्रिया बीज की बुआई से ही शुरू हो जाती है। यदि किसान को गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार करना है तो पूरे मौसम के दौरान उसमें कई तरह की सावधानियां बरतनी होती है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे बीज उत्पादन के लिए ऐसे खेत का चयन करें या ऐसी जगह का चयन करें जहां जल भराव की समस्या न होती हो, जहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हो, खरपतवार का नियंत्रण विशेष रूप से वहां पे उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खेत में जो बीज हम डाल रहे हैं जिससे हम अगला बीज तैयार करना चाहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: उसकी गुणवत्ता, शुद्धता और उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि खराब बीज से अच्छी फसल या अच्छा बीज हम हासिल नहीं कर सकते।
0: जी हाँ।
1: तो फसल के बढ़वार के दौरान नियमित रूप से ये जाकर देखना जरूरी होता है कि खेत में या पौधों पे कोई कीट या बीमारी तो नहीं लग रही है, है ना, पौधे असमान तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा हो रहा है, कोई बहुत छोटा हो रहा है, तो ये निरीक्षण लगातार करते रहना पड़ता है जिससे बीज की गुणवत्ता हम सुनिश्चित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही बताया। जैसा कि आपने हमें बताया कि खेत से शुरू होता है बीज उत्पादन, यही श्रेष्ठ पौधे का चयन हमारे किसान भाई बहन कैसे कर सकते हैं?
1: तो किसान भाइयों, बीज चयन के लिए जो श्रेष्ठ पौधों का चयन होता है, तो बीज चयन के लिए केवल हमें दानों का चयन नहीं करना है, बल्कि भविष्य की फसल का हम चयन कर रहे हैं, इस चीज को हमें याद रखना है। तो किसान भाई जिस पौधे से भी बीज रखते हैं वो वास्तव में अगले साल की फसल की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। यदि बीज अच्छे होंगे तो फसल अच्छी होगी।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों कि श्रेष्ठ पौधों का चयन, तो श्रेष्ठ पौधे के चयन के लिए हमारे नियमित निरीक्षण के आधार पर हमें एक जैसे पौधों का चयन करना है। दूसरा, हमें ऐसे पौधों का चयन करना है जो खेत में सबसे मजबूत स्थिति में हो।
0: जी जी।
1: जिसपे पूरे आकार के फल लगे हों, और यदि एक से अधिक फल लगने वाली फसल है तो जिसमें सबसे ज्यादा फलियां या दाने लगे हैं, इस तरह के पौधों का चयन हमको करना है।
0: बिल्कुल।
1: पौधे के चयन में हमको ये भी ध्यान रखना है कि किस पौधे ने कीटों या बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ के अपनी पैदावार को उत्पन्न किया है।
0: बिल्कुल।
1: तो यदि इस तरह से हम एक पौधे का चयन करते हैं और उससे बीज प्राप्त करते हैं तो वो स्वस्थ, गुणवत्तापूर्ण, और हम उस बीज को एक शक्तिशाली बीज बोल सकते हैं जो कीटों और बीमारियों से बेहतर लड़ने की क्षमता अपने अंदर रखता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही अब हम जानना चाहेंगे कि बीज शुद्धता की पारंपरिक प्रक्रिया क्या है जो हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान होनी चाहिए।
1: तो किसान भाइयों, बीज शुद्धता की पारंपरिक प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो फसल में मौजूद अवांछित पौधों को हमें निकाल देना चाहिए, जहां जो भी खरपतवार है या फिर ऐसी फसल जो हमने नहीं लगाई है और जिसकी आवश्यकता या जरूरत हमें नहीं है। तो बीज उत्पादन में ये बीज की शुद्धता को निर्धारित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
0: बिल्कुल।
1: अगर हम ये नहीं करते हैं तो इससे बीज की जो शुद्धता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि कार्यक्रम में हम बीज प्रबंधन को लेकर ढेर सारी बातें आपके माध्यम से जान पा रहे हैं, यही बीज की सफाई और ग्रेडिंग का क्या महत्व है?
1: तो किसान साथियों, बीज की सफाई और ग्रेडिंग की यदि बात करें तो बीज की सफाई केवल उसकी सुंदरता बढ़ाने का विषय नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: ये उसकी गुणवत्ता का प्रश्न है। जब किसान बीजों की सफाई करते हैं तो वास्तव में वो फसल की गुणवत्ता सुधार रहे होते हैं।
0: जी।
1: तो हमें छोटे दाने, टूटे हुए दाने या किसी तरह से रोगग्रस्त या कीटों के द्वारा खाए हुए दाने, इस तरह के दानों को अलग करना उसकी ग्रेडिंग का एक हिस्सा है। तो केवल पूरे भरे हुए, विकसित और स्वस्थ और भारी दानों को ही हमको बीज के रूप में उपयोग करना चाहिए। कई किसान पारंपरिक रूप से बीजों को उड़ा के भी देखते हैं, यानी कि हवा में से उनको नीचे गिराते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कोई बीज यदि अंदर से किसी कीट ने खा लिया है और उसका छिलका ही बचा है तो वो बीज इस तरह से अलग हो जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ सामान्य रूप से कई सारे किसान साथी पानी में डुबा कर भी बीजों का निरीक्षण करते हैं कि जो बीज अच्छे होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो बीज गुणवत्तापूर्ण नहीं होंगे वो पानी के ऊपर तैरते हैं। तो इस तरह से भी खराब बीजों को और अच्छे बीजों को अलग किया जाता है और ये ग्रेडिंग के भाग हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: अंत में हमारे किसान साथियों के लिए मेरा यही संदेश है कि जिस तरह से आज की परिस्थितियां हैं, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारी खेती पर बहुत तेजी से पड़ रहा है, इस स्थिति में हमें निश्चित उत्पादन पाने के लिए अपने पारंपरिक बीजों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जलवायु के अनुकूल है। ये कम पानी, ज्यादा पानी जैसी परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ इनमें अपनी एक बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिससे हमें खेत में दूसरी तरह के अन्य खर्च करने की आवश्यकता कम से कम होती है।
0: बिल्कुल। तो सर, आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: आपका, वागड़ रेडियो का और सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: બહેન બુનો જેમ કે આપણે આપણે વાસે મનીષજી જોડ્યો તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકાથી બતાડ્યું હે કે આપણે જે વાગડ ક્ષેત્રના કિસાન ભાઈ બુન હે એ પારંપરિક બીજોનું પ્રબંધન હરતે કરી કઈ કઈ વાતોનું એણાને ધ્યાન રાખવું હે એની સાથે આપણી જે બુને હે એણાની બીજ ચયન મેં હું ભૂમિકા હે ને બીજની સફાઈની ગ્રેડિંગનું હું મહત્વ હે આશા કરો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું સૂટા તો પડ પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ઓર ગીત ને મોરે પડો સૂટા।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सच्चा बचपन में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारा एक नया विषय जुड़ता है और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि किस तरीके से खाद्य सुरक्षा हमें बनाकर रखनी है। जी हाँ श्रोता साथियों, हम सभी के दिन की शुरुआत किसी न किसी भोजन से होती है। घर में बना गर्म खाना हो, बच्चों का टिफिन हो, बाजार से लाई गई कोई खाद्य सामग्री हो या शाम की चाय के साथ खाया जाने वाला नाश्ता, खाना हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है। लेकिन श्रोता साथियों, क्या केवल खाना बना लेना ही पर्याप्त है? क्या हम यह भी ध्यान रखते हैं कि जिस भोजन को हम अपने परिवार को खिला रहे हैं वह साफ, सुरक्षित और मिलावट से मुक्त है? अक्सर हम रसोई की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन भोजन को किस तापमान पर रखना चाहिए, कच्चे और पके भोजन को अलग क्यों रखना चाहिए, पैकेट पर लिखी जानकारी को क्यों पढ़ना चाहिए या बाजार से खुले खाद्य पदार्थ खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता और यही छोटी छोटी लापरवाही कभी कभी पेट से जुड़ी समस्याओं और फूड पॉइजनिंग जैसी परेशानियों का कारण बन जाती है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और परिवार के कमजोर सदस्यों के लिए सुरक्षित भोजन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आज कार्यक्रम में हमारी विषय विशेषज्ञ से बातें रहेंगी, स्वच्छ रसोई, सुरक्षित भोजन और स्वस्थ परिवार की क्या नींव है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हमारी बातचीत रहने वाली है स्वच्छ रसोई, सुरक्षित भोजन और स्वस्थ परिवार को लेकर। तो इस विषय को सही और विश्वसनीय तरीके से समझने के लिए आज हमारी बातचीत होने वाली है खाद्य सुरक्षा अधिकारी से। उन्होंने हमें बताया कि घर में भोजन को सुरक्षित रखने से लेकर बाजार से खाद्य सामग्री खरीदने तक किन जरूरी सावधानियों को अपनाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं हमारी यह विशेष विशेषज्ञ बातचीत को और जानते हैं कि हमारी थाली तक पहुंचने वाला भोजन सुरक्षित कैसे रहे और हमारा परिवार स्वस्थ कैसे रहे। सर नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: जी धन्यवाद।
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम सच्चा बचपन से जुड़ रहे हैं और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि किस तरीके से हम हमारी स्वच्छ रसोई, सुरक्षित भोजन और स्वस्थ परिवार की जो नींव है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये बातें हमारी कार्यक्रम में आपसे अवश्य रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपके परिचय से रूबरू हमारे श्रोता साथियों को करवाना चाहूंगी।
1: जी मेरा नाम हजारलाल अलोरिया है। मैं बांसवाड़ा जिला रसद अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और केंद्र राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी और लोक कल्याणकारी योजना है खाद्य सुरक्षा योजना, उसका संचालन पर्यवेक्षण मेरे और मेरे कार्यालय द्वारा किया जाता है।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया, तो यही सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खाद्य सुरक्षा क्या है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है।
1: खाद्य सुरक्षा योजना जो है वो समय पर पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्राप्त हो सके ताकि लोग सक्रिय और स्वच्छ जीवन जी सके।
0: बिल्कुल।
1: ये इसका उद्देश्य है। और जहाँ तक इसकी आवश्यकता की बात है तो समाज में जो कुपोषण भुखमरी की स्थिति है उससे मुक्ति, अच्छा भोजन अच्छा स्वास्थ्य देता है तो स्वास्थ्य सुरक्षा,
0: बिल्कुल,
1: आर्थिक स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा, शांति,
0: जी,
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिनके लिए ये खाद्य सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। तो सर यहीं पे जानना चाहूंगी कि घर में भोजन को सुरक्षित रखने के सबसे जरूरी नियम क्या होने चाहिए।
1: भोजन को सुरक्षित रखने के लिए जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नियम निर्धारित किए हुए हैं, उसमें पहला है सफाई, दूसरा है कच्चा भोजन पक्का भोजन उसको सेपरेट रखना, भोजन को सही टेम्परेचर पर गर्म करना और तैयार भोजन को सही टेम्परेचर पर ठंडा रखना। ये मोटे मोटे चार नियम WHO ने निर्धारित किए जिससे भोजन को हम ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते।
0: बिल्कुल। तो सर घर में कच्चे और पक्के भोजन को अलग रखना क्यों जरूरी है।
1: जैसा कि आप जानते हैं कच्चा भोजन और पका हुआ भोजन, इनको अलग रखना इसलिए भी जरूरी होता है कि एक बैक्टीरिया जो डेवलप होता है तैयार भोजन में उसका एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो, क्रॉस कॉन्ट्रीब्यूनेशन ना हो, इसके लिए दोनों को सेपरेट रखा जाना बहुत जरूरी है और रखा जाना चाहिए।
0: बिल्कुल। और यही सर बचा हुआ जो भोजन होता है उसे सुरक्षित रखने और दोबारा गर्म करने का सही तरीका क्या है।
1: जी जी भोजन है बचा हुआ भोजन है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर फ्रीजर में रखा जाना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे और उसको पुनः गर्म करने के लिए एक निर्धारित टेम्परेचर तक उसको गर्म किया जाना जरूरी है ताकि बैक्टीरिया जो डेवलप हुआ है वो नष्ट हो सके। इसके लिए मोटे तौर पर लगभग 74 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको पुनः गर्म किया जाना जरूरी है।
0: बिल्कुल। यही सर हम देखते हैं कि जो खाद्य पदार्थ हैं बहुत सी बार हम बाजार से भी खरीदते हैं, तो उन पैकेट वाली चीजों पर हमें किन किन चीजों की जांच करनी चाहिए।
1: देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि आम उपभोक्ता अभी भी इतना अवेयर नहीं है कि इन चीजों पर वो गौर करे। अभी भी उपभोक्ता सिर्फ रेट देख लेता है कि ये चीज सस्ती है तो ये ले लेते हैं, जबकि मैं आपके माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी आप खाद्य पदार्थ पैकेट्स खरीदते हैं उनपे सबसे पहले जो है वो मैन्युफैक्चरिंग निर्माण के संबंध में उसका देखना चाहिए, दूसरा उसकी वैलिडिटी कब तक है, एक्सपायरी डेट कब है, उस पे FSSAI का मार्का है या नहीं है, इंग्रेडिएंट उसमें क्या है वो उस पे मेंशन है या नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: और खाद्य पदार्थ यदि वेज नॉन वेज अलग अलग है तो उसपे लोगो ग्रीन कलर का वो मेंशन है या नहीं है। तो मोटे मोटे ये सब चीजें हैं। इसके लिए भारत सरकार ने भी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का गठन किया हुआ है जो इन सब चीजों को मॉनिटर करता है।
0: बिल्कुल, यही सर हम सभी जानते हैं कि बहुत सी बार खाने पीने की चीजों में मिलावट हो जाती है, तो उसका क्या संकेत होता है, इसकी पहचान हमारे उपभोक्ता कैसे कर सकते हैं?
1: देखिए, वैसे तो लैबोरेटरीज है, लैबोरेटरीज में मोटे तौर पर सारे खाद्य पदार्थों की जांच की जा सकती है और राज्य सरकार द्वारा भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद स्थापित है, हर जिले में पद स्थापित होते हैं, वो भी समय समय पर जांच और टेस्टिंग सैंपलिंग कार्रवाई करते रहते हैं। फिर भी एक आम उपभोक्ता के लिए जो आसानी से जो मोटे मोटे टेस्ट है कि वो घर पे ही खुद कर सकता है, उसके लिए भी FSSAI ने एक बुकलेट जारी की हुई है।
0: बिल्कुल,
1: उसके माध्यम से भी हम चीजों के मोटे तौर पर पहचान कर सकते हैं कि ये जो खाद्य सामग्री है ये मिलावट युक्त है या शुद्ध है। जी, जैसे डेयरी उत्पाद है, डेयरी उत्पाद में दूध में पानी की मिलावट की जांच के लिए ना एक बहुत सीधा सा सिंपल सा एक टेस्ट है कि यदि एक बूंद दूध की किसी चिकनी और तिरछी सतह पर अपन डालेंगे जैसे स्टील प्लेट वगैरह और इस तरह के, तो यदि शुद्ध दूध है तो वो उसका जो बहने का रहेगा वो बहुत धीरे बहेगा और अपने पीछे एक लाइन छोड़ेगा, सफेद लाइन छोड़ता हो जाएगा, जबकि उसमें यदि पानी की मिलावट है तो तुरंत बह जाएगा और उस पीछे कोई इस तरह की कोई लाइन डेवलप होगी नहीं। एक मोटा सा टेस्ट है। इसी तरह से डिटर्जेंट का है, डिटर्जेंट जो है वो भी इसमें मिलाया जाता है जैसा कि सुनने में आता है, तो इसके लिए यदि कांच की बोतल में थोड़ा दूध ले उतनी मात्रा में उसमें पानी मिला करके उसको यदि हम हिलाते हैं और उसमें घना गाढ़ा झाग बन जाता है और वो लंबे समय तक रहता है तो मिलावट की संभावना उसमें रहती है, अदरवाइज वो इतना वो आएगा नहीं उसमें। ऐसे घी मक्खन का है, टिंचर आयोडीन मिला करके उस घी की क्वालिटी जांच कर सकते हैं। माया खोआ जो है उनको भी मोटे तौर पर एक बार हम हाथ से ही लेकर के दो उंगलियों के बीच से यदि उसको रगड़ के देखे वो मुलायम और दानेदार हो रहा है, एक महक आ रही है, तो वो मोटा मोटा शुद्ध एक तरह से माना जाता है। और यदि वो चिपचिपा हो गया तो संभावना है कि वो शुद्ध नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह से मसालों का है, हरी सब्जियों का भी है, तो ये मोटे मोटे ऐसे टेस्ट है जो हम खुद घर पे ही कर सकते हैं। इसके लिए बस एक अवेयरनेस की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल सर, तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि खुले में बिकने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनको खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है?
1: देखिए, खुले में वैसे तो मैं उपभोक्ताओं से यही अनुरोध करूंगा कि जो सामग्री खुले में बिक रही है कृपया अवॉइड करें। कई बार सस्ते के चक्कर में उनको ले लेते हैं, तो ये हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए उपभोक्ता सामग्री खरीदे। फिर भी यदि खुले में कई सामान खरीद रहे तो उसपे खरीदते समय वहाँ की सफाई, खाद्य पदार्थ की ताजगी, वो ढका हुआ है या नहीं है, उसका नमी वगैरह का एक बार देख करके फिर वो सामग्री लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल, यही सर, अगर किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट या गुणवत्ता की शिकायत हो तो उपभोक्ता उसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं?
1: जी, जैसा मैंने पूर्व बताया था, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है, उसकी हेल्पलाइन है, राज्य सरकार का एक संपर्क पोर्टल है 181, उस पर लिखित शिकायत हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा मैंने पूर्व बताया खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, वो उसको डील करेंगे। मेरे विभाग का उपभोक्ता हेल्पलाइन है 1800180630, ये उपभोक्ता हेल्पलाइन है। इसी तरह से व्हाट्सएप नंबर भी है 7230086030, उपभोक्ता इन पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
0: बिल्कुल, यही सर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में आप हमारे श्रोता साथियों को सुरक्षित भोजन के लिए क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सभी उपभोक्ताओं को ये संदेश देना चाहूंगा, अनुरोध भी करना चाहूंगा कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो पूर्णतः भोजन पर निर्भर करता है। हम किस तरह का भोजन ले रहे हैं, भोजन में क्या इंग्रेडिएंट्स हम ले रहे हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स की कितनी मात्रा हम इंटेक कर रहे हैं, इस पे हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो खुले में जो सामान बिक रहा है जैसे मैंने पूर्व में कहा, या दूषित भोजन है, उनसे बचने के लिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ है वो जो रखा हुआ है उस स्थान की साफ सफाई, कच्चे पक्के भोजन का सेपरेशन, सही टेम्परेचर पर भोजन को गर्म करना, सुरक्षित भंडारण, ये इन सब चीजों के लिए आवश्यक है। और जैसा मैंने पूर्व बताया कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय उस पदार्थ की एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग इंग्रेडिएंट्स, FSSAI का लोगो, ये भी देखें तो इससे हमें बहुत बाजार में हम इन मिलावटी चीजों से बचा जा सकता है, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सकता है।
0: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आज आपने कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों को खाद्य सुरक्षा को लेकर ढेर सारी जानकारी से अवगत करवाया है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: धन्यवाद।
0: श्रोता साथियों, आपने सुना कि सुरक्षित भोजन केवल अच्छी तरह खाना बनाने का नाम नहीं है, बल्कि भोजन की खरीदारी से लेकर उसकी सफाई, तैयारी, भंडारण और परोसने तक हर कदम पर सावधानी जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि छोटे से लापरवाही से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन भोजन के मामले में छोटी सावधानी भी बहुत बड़ा बचाव बन सकती है। साफ हाथों से खाना खाना, कच्चे और पक्के भोजन को अलग रखना, भोजन को सही तरीके से ढककर रखना, खराब या संदिग्ध खाद्य पदार्थ से बचना और पैकेट वाली चीजें खरीदते समय उनकी जरूरी जानकारी पढ़ना, ये ऐसे काम हैं जिन्हें हम बिना किसी बड़े खर्चे के अपनी रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा बना सकते हैं। जी हाँ श्रोता साथियों, सुरक्षित भोजन की जिम्मेदारी केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं है। रसोई में खाना बनाने वाले व्यक्ति से लेकर बाजार से सामान लाने वाले सदस्य तक, परिवार के हर व्यक्ति की इसमें भूमिका है। और जब परिवार में सही आदतें बनती है तो वही आदतें बच्चों के व्यवहार में भी आती है। इसलिए आज से जब भी हम अपने परिवार के लिए खाना बनाएं या कोई खाद्य पदार्थ खरीदें, तो एक पल रुककर जरूर सोचें कि क्या यह भोजन साफ है, सुरक्षित है और अपने परिवार के लिए सही है। क्योंकि श्रोता साथियों, स्वस्थ परिवार की शुरुआत केवल पौष्टिक भोजन से नहीं बल्कि सुरक्षित भोजन से भी होती है। तो बातें ढेर सारी हो गई है और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी तक ही करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली में जीवन जीवन। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगाव। जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज तक इस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: साथियों लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं, जीवन में हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जीवन एक विशाल दर्पण की तरह है। हम दुनिया के सामने जो भाव, जो शब्द, जो कर्म रखते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यह प्रकृति का एक ऐसा नियम है कशिश, जो न दिखता है और न ही सुनाई देता है, पर हर पल काम करता रहता है। जैसा कि श्रोताओं, जो बोएगा वैसा ही हम काटेंगे। यही कहावत सिर्फ खेती के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए सच है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले गीत सुन ले हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ, टूटा टूटा एक

0: ਹੱਸਦੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੱਸਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਏਗਾ।
1: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि जीवन में आप जो देते हैं वही वापस पाते हैं। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि हमारा मानव जीवन एक गहरा दर्पण है।
2: जी हाँ,
1: हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं और जैसा व्यवहार करते हैं, जीवन हमें वैसा ही लौटा कर देता है। और जैसा कि आपने गीत से पहले बताया था कि यही कर्म का सिद्धांत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
2: बिल्कुल,
1: यानी कि श्रोता साथियों, व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। कहा जाता है कि ये सिद्धांत केवल धार्मिक या फिर दार्शनिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह व्यवहारिक और जीवन के हर क्षेत्र में लागू होने वाला एक सत्य है।
2: जी हाँ कशिश, क्योंकि मनुष्य अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने कर्मों के माध्यम से अपनी वास्तविक दुनिया तैयार करता है। जब हम किसी के प्रति सम्मान, प्रेम, सहयोग या सत्य निष्ठा देते हैं,
1: बिल्कुल
2: सकारात्मकता कई गुना बढ़कर हमारे जीवन में वापस लौट आती है।
1: जी हाँ,
2: वहीं अगर हम कटुता, स्वार्थ या बुराई फैलाते हैं तो उसके परिणाम भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते ही है। यही कारण है कि महान विचारकों ने कहा है कि जीवन प्रतिध्वनि है, जो हम भेजते हैं वही लौटता है।
1: बिल्कुल
2: श्रोताओं, हम जो करते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। एक किसान खेत में गेहूं बोकर चावल की उम्मीद नहीं कर सकता कशिश। उसी तरह श्रोताओं, हर मन में नफरत, ईर्ष्या और आलोचना भरकर जीवन में शांति, सम्मान और सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कर्मों का यही नियम कहता है कि आपका हर छोटा बड़ा काम आपके जीवन की कहानी लिख रहा है। अगर हम दूसरों को खुशियाँ देते हैं तो जीवन हमें खुशियों के नए कारण देता है।
1: बिल्कुल,
2: उदाहरण के तौर पर श्रोता साथियों, आपको बताएं कि किसी ऑफिस में दो कर्मचारी साथ में काम करते हैं। एक हर किसी से मुस्कान से बात करता है, मदद करता है और सभी का सम्मान करता है।
1: जी।
2: दूसरा हमेशा शिकायत करता है और दूसरों को नीचा दिखाता है। कुछ महीनों बाद पहला जो कर्मचारी है कशिश, सबकी पसंद बन जाता है और उसे टीम लीड की जिम्मेदारी मिलती है, जबकि दूसरा अकेला रह जाता है। कारण साफ है, जीवन वही लौटाता है जो हम देते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं साथियों, हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, प्यार मिले और सहयोग मिले और साथ ही सफलता भी मिले।
2: जी हाँ,
1: लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि इन सबको पाने का पहला कदम हमें खुद देना होता है। यदि हम मुस्कुराकर बात करें, लोगों की मदद करें, दिल से शुभकामनाएं दें और दूसरों की खुशियों में खुद खुश होएं, तो जीवन भी हमें वही ठीक भावनाएं श्रोता साथियों अवश्य लौटा कर देगा। हम देखते हैं कि हमारे कर्म हमारी पहचान बनाते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं, अच्छे काम करते हैं और नेक नीयत से आगे बढ़ते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक बन जाता है।
2: जी हाँ,
1: इसके अलावा यदि किसी के मन में ईर्ष्या, नफरत या फिर बुरे विचार हैं जागृति जी, तो वही ऊर्जा उसके जीवन में वापस लौट कर आ जाती है।
2: बिल्कुल
1: दोस्तों, देख सकते हैं कि अच्छे कर्म का मतलब है सकारात्मक परिणाम और बुरे कर्म का मतलब है नकारात्मक परिणाम। और यही सिद्धांत प्रकृति का अटल नियम है।
2: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि जब हम किसी की बिना मतलब मदद करते हैं तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं हमारे जीवन को सुंदर बना देती है।
2: जी हाँ,
1: शायद वही श्रोता साथियों मदद किसी और के रूप में किसी और समय पर हमें वापस मिल जाती है, कभी संयोग रूप में तो कभी अवसर के रूप में और कभी किसी अनजान व्यक्ति की सहायता के रूप में।
2: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि दया का दिया हुआ दीपक कभी अंधेरा नहीं लौटाता।
2: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम सिर्फ कर्म ही नहीं विचार भी भेजते हैं। सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति अवसर ढूंढ लेता है, जबकि नकारात्मक सोचने वाला हर जगह समस्या देखता है। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे भीतर एक सकारात्मक कंपन पैदा होता है, जो हमारे व्यक्तित्व, निर्णय और संबंधों को बेहतर बनाता है। श्रोता साथियों, धीरे धीरे वही सकारात्मकता हमारी तरफ वापस आकर्षित होती है।
1: जी।
2: और यही आकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
1: बिल्कुल
2: श्रोताओं, हम वही खींचते हैं जो हम सोचते हैं। अगर मन में दया है तो दया मिलती है, अगर मन में सम्मान है तो सम्मान मिलता है, अगर मन में प्रेम है तो प्रेम लौटता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, कह सकते हैं कि प्रेम और सम्मान का आदान प्रदान ही सच्चा जीवन है। जैसे कि यदि हम दूसरों को सम्मान दें तो हमें भी सम्मान मिलेगा।
2: जी हाँ,
1: यदि हम प्यार बांटें तो हमें भी प्यार मिलेगा। मान सम्मान और रिश्ते आपसी लेन देन पर ही टिके होते हैं साथियों। रिश्तों का नियम बिल्कुल स्पष्ट है, जितना प्यार दोगे उतना ही ज्यादा वापस पाओगे।
2: जी हाँ,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी सोच भी उसी तरह हमें लौटाती है। अगर हम हर स्थिति को सकारात्मक तरीके से लेते हैं जागृति जी, तो कठिन परिस्थितियों में भी हमें समाधान दिखते हैं।
2: जी हाँ,
1: लेकिन अगर हम केवल शिकायत करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं और चारों तरफ नकारात्मकता फैलाते रहते हैं, तो जिंदगी भी हमें वही अनुभव करवाती है। जो ऊर्जा आप दुनिया में भेजते हैं साथियों, वही दूसरे रूप में बदलकर आपके पास वापस आती है।
2: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम जो देते हैं वही हमें वो वापस मिलता है, तो साथियों जैसे कि हमने कहा था कि मेहनत, अनुशासन, समय और समर्पण, ये सब चीजें हम जीवन को देते हैं। बदले में जीवन हमें सफलता, सम्मान और उपलब्धियां देता है। कशिश, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए श्रोताओं, जो लोग हिम्मत, लगन और जुनून देते हैं वही ऊंचाइयां पाते हैं। अगर हम सिर्फ शॉर्टकट ढूंढे, आलस करें या बहाने बनाए तो जीवन भी हमें सिर्फ असंतोष और पछतावा लौटाता है।
1: बिल्कुल,
0: जब हम ज्ञान बांटते हैं हम और अधिक ज्ञानवान बनते हैं। जब हम बच्चों को शिक्षित करते हैं समाज बेहतर बनता है। जब हम किसी को रास्ता दिखाते हैं हमारी अपनी राह भी उजली हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, शिक्षा हमेशा दो तरफ चलने वाली नदी की तरह है, देने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है।
1: बिल्कुल साथी दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि अभद्रता और नकारात्मकता भी वापस लौट कर आती है, क्योंकि यदि कोई दूसरों से बुरी तरीके से बात करता है, गलत व्यवहार करता है जागृति जी, या फिर किसी कारणवश किसी का दिल दुखाता है, तो अंत में वही खराब भावनाएं उसके जीवन को प्रभावित करती है। क्योंकि दोस्तों, खुद बया हुआ कड़वा फल ही वापस लौटकर खुद के पास ही आता है।
0: बिल्कुल,
1: व्यापार में विश्वास, सत्यता और ईमानदारी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यापार ईमानदारी से करता है उनका काम समय के साथ बढ़ता जाता है।
0: बिल्कुल,
1: वहीं दूसरी ओर जो लोग लोभ और झूठ से काम करते हैं उनका पतन निश्चित होता है। हम देखते हैं साथियों कि इसमें आध्यात्मिकता का भी अर्थ है, यानी कि आध्यात्मिक रूप में यह भी नियम सत्य है। साथियों, कर्म, विचार और भावनाएं एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में घूमती है और फिर इंसान के जीवन में वापस आती है। इसलिए ये कहा गया है कि कर्म की गति बड़ी विचित्र है पर न्याय पूर्ण है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि पेड़ हमें बताते हैं आज एक बीज को प्रेम से सींचो, वह हमें छाया, फल और ताजगी लौटाता है। नदियाँ बताते हैं साथियों, जो पानी हम साफ रखते हैं वही पानी हमारी प्यास बुझाता है। आसमान बताता है कि जो उम्मीद हम उड़ान को देते हैं वही हमें ऊंचाइयों के रूप में वापस मिलती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, पूरी प्रकृति देने और पाने के संतुलन पर चलती है। हर समाज में सम्मान देना सीखे, समर्पण देना सीखे और सहयोग देना सीखे।
1: बिल्कुल,
0: जब हम समाज में अच्छा योगदान देते हैं, लोग हमें भरोसा देते हैं, सहयोग देते हैं और पहचान देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी की जिंदगी आसान बनाकर हम अपनी जिंदगी को सार्थक बनाते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों, रिश्तों में भावनात्मक निवेश होना भी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि रिश्ते बैंक के खाते की तरह होते हैं। जितनी अच्छी बातें, जितनी अच्छी समझदारी और समय हम उन्हें जमा करते हैं, उतना ही विश्वास, साथ और मजबूती हमें वापस मिलती है। अगर रिश्तों में कमी, गुस्सा या फिर लापरवाही देंगे साथियों, तो दूरी, गलतफहमी और टूटन जरूर मिलती है। हम देखते हैं कि शब्दों का असर और उनकी वापसी भी होती है। जैसे कि हमारे बोले गए शब्द सिर्फ हवा में नहीं खो जाते, वे सामने वाले के मन पर असर छोड़ते हैं और वही असर किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस आता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए हम कह सकते हैं कि मीठे शब्द यानी अच्छे रिश्ते और कड़वे शब्द यानी कि तनाव और पछतावा, दोस्तों शब्दों की फसल भी काटनी ही पड़ती है। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वही व्यवहार अंत में दुनिया में दिखाती है। अगर आप साथियों लोगों को अवसर देते हैं, जीवन भी आपको नए अवसर देगा। अगर आप लोगों को नीचा दिखाते हैं तो जीवन भी कभी न कभी आपको गिराकर सबक जरूर देता है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि अगर जीवन में खुशहाली चाहिए साथियों तो पहले अपने भीतर खुशियाँ पैदा करनी होगी। अगर शांति चाहिए तो पहले दूसरों को शांति देनी होगी। अगर प्यार चाहिए तो पहले खुद को प्यार देना होगा। नकारात्मकता सिर्फ नकारात्मकता को जन्म देती है कशिश, इसलिए हमें शिकायत से ज्यादा प्रशंसा देना सीखना होगा, घृणा से ज्यादा प्रेम देना सीखना होगा और स्वार्थ से ज्यादा सहयोग देना सीखना होगा। श्रोताओं, जीवन में हम जो भी देते हैं, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारी ऊर्जा, हमारे शब्द, सब किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आते हैं। अगर हम दुनिया में रोशनी फैलाते हैं तो जीवन हमारी दुनिया जगमगा देती है। अगर हम प्रेम बोते हैं कशिश तो रिश्ते खेलते हैं। अगर हम मेहनत बोते हैं तो सफलता मिलती है। और श्रोताओं, अगर हम सपने बोते हैं तो उपलब्धियां मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए जीवन एक प्रतिध्वनि है, हम जो भेजते हैं वही लौट कर आता है। इसीलिए हमेशा अच्छाई, दया, प्रेम, सहयोग और सकारात्मकता देने की आदत डालिए। हमारा हर छोटा कार्य हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन बनकर लौटता है। तो साथियों, आप ये संकल्प लें कि मैं दुनिया को वही दूंगा या दूंगी जो मैं अपने जीवन में पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी हो चुकी है, जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से जान पाए हैं कि जीवन में हम जो चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता। बस श्रोता साथियों, हमें अपनी सोच पर बदलाव लाना होता है, क्योंकि जीवन को हम जो देते हैं वापस लौटकर जरूर आता है। तो जैसा कि बातें पूरी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम में युवाओं की आवाज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी हमारे आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी दोस्त जागृति को।
1: नमस्कार।

0: मिलेगा। तो वे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके। शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा। शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है गांव का ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय संस्कृति रोजगार के अवसर को लेकर। जैसा कि अंजलि, गांव की पगडंडियों में केवल मिट्टी की खुशबू नहीं होती, वो हमारी संस्कृति की पहचान बसती है। खेती की हरियाली, कुएं और तालाब, पशुओं की घंटियों की आवाज, लोकगीतों की मिठास, पारंपरिक भोजन का स्वाद, हस्तशिल्प की कला और सादगी भरा ग्रामीण जीवन, ये सब मिलकर गाँव को अपने आप में एक खूबसूरत संसार बनाते हैं। आज जब शहरों की भाग दौड़ से लोग थकने लगे, तब उन्हें गांव का शांत और प्राकृतिक वातावरण आकर्षित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण पर्यटन आज गांव के विकास और रोजगार का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली हैं। लेकिन क्यों न कार्यक्रम के शुरुआती गीत के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गांव के ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को लेकर। जैसा कि अंजलि, ग्रामीण पर्यटन का अर्थ केवल गाँव में घूमना नहीं है, इसका अर्थ ये है कि गाँव के प्राकृतिक वातावरण, स्थानीय संस्कृति, परंपराओं, खान पान, लोक कला, कृषि और ग्रामीण जीवन को पर्यटकों के अनुभव से जोड़ना। जब कोई व्यक्ति गांव में जाकर खेतों को देखता है, किसान से खेतों के बारे में जानता है, स्थानीय भोजन का स्वाद लेता है, लोकगीत सुनता है या पारंपरिक हस्तशिल्प खरीदता है, तो वो केवल पर्यटन नहीं करता बल्कि गांव की जीवन शैली और संस्कृति को करीब से समझता भी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, भारत के गाँव अपनी विविधता के लिए जाने जाते हैं। हर क्षेत्र की अपनी भाषा, बोली, वेशभूषा, खान पान, लोकगीत, लोक नृत्य और परंपराएं होती हैं। राजस्थान के गांवों की बात करें तो यहां की रंग बिरंगी संस्कृति, लोक संगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक भोजन, मिट्टी के घर, हस्तशिल्प, मेले की अपनी विशेष पहचान है। वागर जैसे क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान, लोक संगीत, प्राकृतिक जीवन और स्थानीय कला ग्रामीण पर्यटन को एक अलग पहचान दे सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कह सकते हैं श्रोता साथियों कि ग्रामीण पर्यटन का सबसे बड़ा लाभ यह है किससे गांव में ही रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। अक्सर गांव के लोग रोजगार की तलाश में जागृति जी शहर की ओर जाते हैं, इससे परिवारों से दूरी बढ़ती है और गांव की स्थानीय प्रतिभा का उपयोग गांव में नहीं हो पाता। यदि गांव में पर्यटन से जुड़े छोटे छोटे अवसर विकसित किए जाएं, तो स्थानीय लोगों को अपने ही क्षेत्र में आय का साधन मिल सकता है।
0: जी अंजलि, क्योंकि गांव के घरों को छोटे होम स्टे के रूप में विकसित किया जा सकता है। पर्यटक गांव में रहकर ग्रामीण जीवन का अनुभव ले सकते हैं, वे स्थानीय भोजन खा सकते हैं, खेतों में घूम सकते हैं, गांव की दिनचर्या को समझ सकते हैं। इससे घर के लोगों को अतिरिक्त आय मिल सकती है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही हम देखते हैं कि पर्यटकों को होटल के बजाय वास्तविक ग्रामीण जीवन का अनुभव प्राप्त होता है। स्थानीय भोजन ग्रामीण पर्यटन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन सकता है। आज जब लोग केवल महंगे और आधुनिक भोजन की तलाश में नहीं रहते बल्कि पारंपरिक और पौष्टिक भोजन को भी पसंद करते हैं, बाजरे की रोटी, दाल बाटी, चूरमा, छाछ, स्थानीय सब्जियां, अचार, पापड़, मटरी और अन्य पारंपरिक व्यंजन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। अगर इन्हें साफ सफाई और अच्छी प्रस्तुति के साथ परोसा जाए श्रोताओं, तो स्थानीय परिवारों के लिए आय का अच्छा साधन बन सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, ग्रामीण महिलाओं की भूमिका भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। महिलाएं घर पर बने पापड़, अचार, मसाले, हस्तशिल्प, कपड़े, पारंपरिक सजावटी वस्तुएं और अन्य स्थानीय उत्पाद तैयार कर सकती हैं। श्रोता साथियों, स्वयं सहायता समूह इन उत्पादों को संगठित तरीके से तैयार करके बेच भी सकते हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और उनके पारंपरिक कौशल को बाजार भी मिलेगा।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगी जागृति जी कि स्थानीय हस्तशिल्प ग्रामीण पर्यटन की पहचान बन सकते हैं। मिट्टी के बर्तन, बांस की वस्तुएं, लकड़ी का काम, पारंपरिक आभूषण, कपड़े, कढ़ाई, चित्रकला और अन्य स्थानीय कलाएं केवल सजावट की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वे हमारी विरासत का हिस्सा हैं। यदि पर्यटक इन्हें गांव से सीधे खरीदते हैं तो कलाकार और कारीगर को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सकता है।
0: जी हां अंजलि, क्योंकि ग्रामीण पर्यटन में युवाओं के लिए भी बहुत सारे अवसर हैं। आज के युवा मोबाइल फोन और डिजिटल तकनीक का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वे अपने गांव की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, लोक कला और पर्यटन स्थलों की तस्वीरें, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। इससे गांव की पहचान दूर दूर तक पहुंच सकती है। युवा स्थानीय गाइड, फोटोग्राफी, डिजिटल प्रचार, ऑनलाइन बुकिंग और पर्यटकों की सहायता जैसे कार्यों से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे साथियों कि पर्यटकों के लिए स्थानीय युवाओं द्वारा गाइड की गई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। गांव की कहानी, ऐतिहासिक स्थान, तालाब, मंदिर, खेत, जंगल, लोक परंपराएं और स्थानीय जीवन के बारे में वही व्यक्ति बेहतर बता सकता है जिसने उस संस्कृति को करीब से देखा हो और जिया हो। इससे पर्यटकों को सही जानकारी मिलेगी और युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, ग्रामीण पर्यटन को कृषि से भी जोड़ा जा सकता है। शहरों में रहने वाले बहुत से लोग खेती की वास्तविक प्रक्रिया को करीब से नहीं जानते। गांव में उन्हें खेत दिखाए जा सकते हैं और खेती के अलग अलग चरणों की जानकारी दी जा सकती है। बीज बोने से लेकर फसल तैयार होने तक की प्रक्रिया, जैविक खेती, पशुपालन, स्थानीय बीज और पारंपरिक कृषि ज्ञान को पर्यटन का हिस्सा बनाया जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: इससे किसान अपनी खेती से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं और प्राकृतिक पर्यटन जो है उसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण अवसर भी बहुत सारे हैं। गांव के आसपास के तालाब, पहाड़, जंगल, नदी, खेत और प्राकृतिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। पर्यटन का उद्देश्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, कचरे का उचित प्रबंधन करना, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना और स्थानीय पेड़ पौधों की रक्षा करना भी आवश्यक है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें जो चल रही है वो निरंतर ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें तो ग्रामीण पर्यटन केवल बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय बच्चों और युवाओं के लिए भी सीखने का माध्यम बन सकता है, क्योंकि जागृति जी, इससे वे अपनी संस्कृति को समझ सकते हैं और अपनी परंपराओं पर गर्व करना सीख सकते हैं। कई बार आधुनिक जीवन की दौड़ में नई पीढ़ी अपनी लोक परंपराओं से दूर होती जा रही है। यदि लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक कला और स्थानीय ज्ञान को सम्मान के साथ पर्यटन से जोड़ दिया जाए तो यह विरासत आगे भी जीवित रह सकती है। गांव के मेले और त्योहार भी ग्रामीण पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। स्थानीय मेले, पारंपरिक उत्सव, लोक नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटकों को गांव की वास्तविक पहचान से परिचित करा सकते हैं। ऐसे आयोजन में स्थानीय कलाकारों को मंच दिया जा सकता है, इससे कलाकारों को पहचान और आय दोनों मिल सकती हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि ग्रामीण पर्यटन में स्थानीय भाषा और बोली का भी विशेष महत्व है। किसी क्षेत्र की बोली वहाँ की संस्कृति की आत्मा होती है। पर्यटक जब स्थानीय लोगों से उनकी बोली में कुछ शब्द सीखते हैं, लोकगीत सुनते हैं या स्थानीय कहानियां जानते हैं तो उन्हें गांव से जुड़ाव महसूस होता है। इसलिए पर्यटन के माध्यम से स्थानीय भाषाओं और बोलियों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। इस क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रामीण पर्यटन केवल किसी एक व्यक्ति या संस्था का काम नहीं है। इसमें ग्राम पंचायत, स्थानीय परिवार, किसान, महिलाएं, युवा, कलाकार, दुकानदार और स्वयं सहायता समूह सभी की भागीदारी आवश्यक है। अगर गांव के लोग मिलकर तय करें कि उनके क्षेत्र में किस प्रकार का पर्यटन विकसित किया जाए तो विकास स्थानीय जरूरतों और संस्कृति के अनुसार होगा।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही पर्यटकों की सुविधा का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। हम देखते हैं अंजलि कि साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, सुरक्षित रास्ते, शौचालय, उचित जानकारी और आपातकालीन सहायता, ये सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। पर्यटन बढ़ाने से पहले गांव में आवश्यक सुविधाओं को मजबूत करना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, ग्रामीण पर्यटन के विकास में स्थानीय उत्पादों की पहचान बनाना भी महत्वपूर्ण है। गांव का कोई विशेष भोजन, हस्तशिल्प, प्राकृतिक उत्पाद या सांस्कृतिक कला उसकी पहचान बन सकती है। उसे अच्छी पैकेजिंग और उचित प्रचार के साथ बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को गांव से बाहर के लोगों तक पहुंचाना भी संभव है। यहां सामुदायिक रेडियो की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि सामुदायिक रेडियो गांव के लोगों को स्थानीय पर्यटन की जानकारी समय समय पर देते रहते हैं। स्थानीय कलाकारों, कारीगरों और पर्यटन से जुड़े लोगों की आवाज को सामने ला सकते हैं। रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से जैसा कि हम हमेशा गांव के पर्यटन स्थल, स्थानीय व्यंजनों, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक परंपराओं की जानकारी श्रोता साथियों आप तक पहुंचाते हैं, इससे हम चाहते हैं कि समुदाय के जो लोग हैं वो इसमें भागीदारी लें, जागरूकता बढ़े ताकि वे भी हमारे साथ जुड़कर अपनी कोई ऐसी चीज है जो समुदाय तक वो पहुंचाना चाहते हैं तो वो हमारे रेडियो से जुड़ सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण पर्यटन का उद्देश्य केवल अधिक से अधिक पर्यटकों को गांव तक लाना नहीं होना चाहिए, असली उद्देश्य ऐसा पर्यटन विकसित करना होना चाहिए जिससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, स्थानीय संस्कृति सुरक्षित रहे, युवा और महिलाओं को अवसर मिले और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो।
1: जी हाँ अंजलि, इसके लिए हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारी संस्कृति कोई पुरानी वस्तु नहीं है जिसे केवल दिखाने के लिए रखा जाए। संस्कृति हमारे जीवन का हिस्सा है। लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक भोजन, खेती का ज्ञान, हस्तशिल्प और स्थानीय त्योहार हमारी पहचान है। जब इन्हें सम्मान और उचित अवसर मिलता है तो संस्कृति भी बचती है और रोजगार भी पैदा होता है। और इसी के साथ ग्रामीण पर्यटन गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम हो सकता है। जब गांव का पैसा गांव में ही घूमेगा, स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी और लोगों को अपने क्षेत्र में काम मिलेगा तो अंजलि पलायन की समस्या को कम करने में भी मदद मिल सकती है। छोटे छोटे रोजगार मिलकर गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। आज जरूरत इस बात की श्रोताओं कि हम अपने गांव की ताकत को पहचाने। जिस चीज को हम रोजमर्रा का सामान्य जीवन समझते हैं वही किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नया अनुभव हो सकती है। हमारे खेत, हमारी मिट्टी, हमारा भोजन, हमारी कला, हमारी बोली और हमारी परंपरा, इन सब में संभावनाएं छिपी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, ग्रामीण पर्यटन हमें यह संदेश देता है कि विकास का अर्थ अपनी जड़ों को छोड़ देना नहीं, विकास वह है जिसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ अपनी संस्कृति और प्रकृति को भी सम्मान मिले।
1: बिल्कुल।
0: गांव की पहचान को बचाते हुए यदि नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं तो विकास अधिक टिकाऊ और सार्थक हो सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि गांव केवल रहने की जगह नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं का जीवंत पहचान है। ग्रामीण पर्यटन इन तीनों को रोजगार और विकास से जोड़ने का अवसर देता है। श्रोता साथियों, जब गांव का किसान अपनी खेती से, कारीगर अपनी कला से, महिला अपने हुनर से और युवा अपनी तकनीकी क्षमता से आय अर्जित कर सके, तब गांव वास्तव में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। हमें अपने गांव की सुंदरता को जागृति जी केवल देखने की चीज नहीं बल्कि उसकी ताकत के रूप में पहचानना होगा।
1: बिल्कुल,
0: जब स्थानीय संस्कृति को सम्मान मिलेगा, स्थानीय हुनर को बाजार मिलेगा, स्थानीय लोगों को अपने ही गांव में रोजगार मिलेगा, तभी ग्रामीण पर्यटन विकास का माध्यम बनेगा। यही ग्रामीण पर्यटन की असली भावना है कि अपनी मिट्टी से जुड़कर अपनी संस्कृति को बचाकर और अपने ही गांव में रोजगार के नए रास्ते बनाकर हम आत्मनिर्भर बन सके।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब समय का मान रखते हुए हम आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।
2: छुप गए।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम घूमर हमरावारी अमर हित्ते बुने ने आपनी बुन मनीषा
1: ने आपनी बुन अंजलि नु
2: राम राम।
0: हुवे भाइयों बुनो आप सब हमले रिया हो आपरू सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में।
1: हुवे भाइयों बुनो लेने हाजिर थे गयो हो कार्यक्रम घूमर ने लेने एक नया विषय ने हाथे मनीषा बुन आज आपड़े कार्यक्रम में बुनो ते की बातचीत नु विषय है कि आपड़े जे बुन रहे ई एना ना हपना ने उमर दीकीने पूरा ने करी एवो एडाने ने करवो सुवे किम के आपणे देखो हो कि घणी वगत आपणी बोनन ने मय घणा कना हपना रहे हैं। अगर कोई मना केणन के है कि तारू आ हपनु है तान पूरू कर ले अवडे भी टाइम है बस एम के है कि अब तो मुगड़ी थी गई अवे करीने हु करू तो आवी चीजे आपणे नथी करवी। आपणी बोनन ने आणी वात नो ध्यान राखवु है कि आपणी उम्र केटली भी हो आपणे कारे भी हीकवू बंद नथी करवू। हर उम्र में आपणे हर चीज हीकी शका।
0: होवे अंजली बोन तो अणा विषय माते आपणे बोने खती घणा काने वाते रेंगा अबर हमळा अगीत ने मोरे करे आपणी वाती
1: तो बोने आप हमर तरेसु आपडू रेडियो आपडी वाते वागर रेडियो 90.8 FM माते।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है जल्दी थकान होना शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी सांस फूलना ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माटी नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जाओ या पसे गांव में स्वाद थई जाए
5: तो हमरो दोनों अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरो ने हाथे मिली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमीन माते नाम लगाड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरो अपनावे जानकारी सबनो हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
4: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लगाड़ो
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

साथियों, कुछ लोग बहस जीत जाते हैं लेकिन रिश्ते हार जाते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचा लेते हैं इसलिए जीवन भर लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। जी हाँ, हर बार सही होना जरूरी नहीं, कई बार साथ होना ज्यादा जरूरी होता है। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पाराश्रय। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जहाँ हम हमारे जीवन की उन बातों पर चर्चा करते हैं जो हमारे मन और हमारे व्यवहार और हमारे रिश्तों को गहराई से प्रभावित करती है। आज का विषय है हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ। आज हम बात करेंगे कि रिश्तों में जीतना जरूरी है या रिश्ते बचाना। श्रोता साथियों, यह सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि हम अपने जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि कई रिश्ते केवल इसलिए कमजोर हो गए क्योंकि दोनों पक्ष अपनी बात मनवाना चाहते थे लेकिन एक दूसरे को समझाना नहीं चाहते थे। घर हो, परिवार हो, दोस्ती हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का संबंध हो या समाज में लोगों के बीच जुड़ाव, हर जगह यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर महत्वपूर्ण क्या है, अपनी जीत या रिश्तों की मजबूती। तो बातें इस विषय पर कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों हमारे आपसे ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि रिश्तों में जीतना जरूरी है या रिश्ते बचाना। श्रोता साथियों, अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि रिश्ते समान विचारों से नहीं बल्कि आपसी सम्मान से चलते हैं। दो लोग कभी भी हर बात पर एक जैसे सोच नहीं रखते। उनकी पसंद अलग होती है, उनके अनुभव अलग होते हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं और यह जीवन की सच्चाई है। जी हाँ, समस्या तब शुरू होती है दोस्तों, जब हम अपनी सोच को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं और सामने वाले की बात सुनना बंद कर देते हैं। कहते हैं ना कि रिश्ते तर्क से नहीं विश्वास से चलते हैं, और विश्वास तब बनता है जब हम सुनना सीखते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति हर बहस जीतना चाहता है, वो कई बार जीवन के सबसे सुंदर रिश्ते हार जाता है। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि रिश्तों को जीतना हमारे लिए क्यों जरूरी है और हम रिश्तों को छोड़कर खुद जीतना क्यों चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, कई बार हमारी इच्छा सच जानने की नहीं होती बल्कि सही साबित होने की होती है। हमें लगता है कि यदि हमने अपनी बात नहीं मनवाई तो हमारी अहमियत कम हो जाएगी। लेकिन सोचिए कि क्या हर बहस में जीतने के बाद भी मन खुश रहता है? क्या सामने वाले की चुप्पी हमेशा सहमति होती है? कई बार लोग बहस बंद कर देते हैं लेकिन दिल से दूर हो जाते हैं, और यही दूरी धीरे धीरे रिश्तों को कमजोर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, परिवार में सबसे ज्यादा जरूरी किसी चीज की होती है तो वह है रिश्तों की। परिवार में और भी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि रिश्तों की समझ होना, धैर्य की समझ होना, संवाद की समझ होना। क्योंकि परिवार कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां हर दिन कोई विजेता चुना जाए। परिवार वह जगह है दोस्तों जहां लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यदि घर में हर व्यक्ति केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा तो वहां अपनापन कम होगा, तनाव अधिक हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं ना कि पति पत्नी का रिश्ता भी जीत और जिद का है। कई बार पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, विषय बड़ा नहीं होता लेकिन उसमें सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों? अहंकार होता है। दोनों सोचते हैं कि पहले सामने वाला झुके। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब कोई एक व्यक्ति यह सहने का साहस रखता है। चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। यह हार नहीं होती है, यह रिश्ते के प्रति सम्मान होता है। क्योंकि माफी मांगना हमेशा गलती की निशानी नहीं होता, कई बार यह रिश्तों को महत्व देने की निशानी होता है। इसी के साथ बात आती है, दोस्ती में जीत नहीं भरोसा जरूरी है। क्योंकि सच्ची दोस्ती में यह मायने नहीं रखता कि कौन सही है, बल्कि ये मायने रखता है कि कठिन समय में कौन साथ खड़ा था। यदि हर छोटी बात पर हिसाब रखा जाए तो दोस्ती बोझ बन जाती है, लेकिन यदि रिश्तों में विश्वास और उदारता हो तो वह समय की हर परीक्षा पार कर लेती है। तो श्रोता साथियों, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि रिश्तों में जीतना जरूरी नहीं है, रिश्ते बचाना जरूरी है। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

दूरियां क्यों बढ़ रही है? तो आज का समाज जो है श्रोता साथियों, उसमें लोग पहले से अधिक जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस बढ़ रही है, लोग बिना पूरी बात समझे निर्णय सुना देते हैं।

रिश्तों को जीत और हार की कसौटी पर मत तोलिए, उन्हें समझ, संवेदना और विश्वास की डोर से जोड़िए, क्योंकि कई बार एक रिश्ता बचा लेना 100 बहसें जीत लेने से कहीं बड़ी उपलब्धि होती है। और जो इंसान लोगों के दिलों को संभालना सीख जाता है, वह जीवन की सबसे अमूल कला सीख जाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम की सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनो, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपने रह हूं या आपने ने कितनी शांति मिले है, जैया हवा में आपने हाल हूं ई भी आपना थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपने हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत रहने वाली है हमारे गाँव की, हमारी मिट्टी की और उन परंपराओं की जिनमें हमारी पहचान बसी हुई है। क्योंकि श्रोता साथियों, जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में बड़े बड़े शहर, ऐतिहासिक इमारतें और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आते हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन श्रोता साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा अपना गांव भी किसी यात्री के लिए एक खूबसूरत अनुभव बन सकता है? मनीषा, गांव की कच्ची पक्की गलियां, खेतों की हरियाली, तालाब, कुएं, पुराने मकान, लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक पहनावा, स्थानीय खान पान, हस्तशिल्प और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां, ये सब मिलकर हमारे गांव की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो कहीं और नहीं मिल सकती।
0: जी हाँ।
1: यही हमारी विरासत है और यही हमारे पर्यटन पहचान भी बन सकती है। तो आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि अपने गांव की संस्कृति और विरासत को पर्यटन से कैसे जोड़ा जा सकता है और इसमें गांव के लोगों की भूमिका क्यों सबसे महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं हमारी विरासत, हमारा गांव और हमारी संस्कृति बन सकती है पर्यटन की पहचान को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ अलग अलग प्रदेशों, भाषाओं, वेशभूषाओं, खान पान, लोकगीतों, लोक नृत्यों, मेलों, त्योहारों और श्रोता साथियों परंपराओं की अलग पहचान है। भारत की असली खूबसूरती केवल बड़े शहरों, ऐतिहासिक इमारतों और प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे गांव की मिट्टी, खेतों की हरियाली, पुराने कुओं, तालाबों, मंदिरों, लोक कलाओं, हस्तशिल्प और सदियों पुरानी परंपराओं में भी छुपी हुई है। गांव में श्रोता साथियों केवल रहने की जगह नहीं है, बल्कि वे हमारी संस्कृति और विरासत का जीवंत संग्रहालय भी है।
1: बिल्कुल मनीषा, हमारा गाँव केवल घरों का समूह नहीं है, गाँव अपने साथ पूरी जीवन शैली लेकर चलता है। कहीं सुबह की शुरुआत पशुओं की देखभाल से होती है तो कहीं खेतों में काम करते किसान दिखाई देते हैं।
0: जी हाँ।
1: कहीं महिलाएं पारंपरिक तरीके से खाना बनाती है तो कहीं बुजुर्गों के पास ऐसी लोक कथाएं और अनुभव होते हैं श्रोता साथियों, जिन्हें सुनकर नई पीढ़ी भी अपनी जड़ों से जुड़ी रह सकती है।
0: बिल्कुल,
1: गाँव में होने वाले मेले, त्योहार, पारंपरिक गीत, नृत्य, स्थानीय बोली, खान पान और पहनावा भी हमारी सांस्कृतिक संपदा है। अगर इन चीजों को सही तरीके से सुरक्षित रखा जाए तो बाहर से आने वाले लोगों को इसके बारे में सम्मान पूर्वक जानकारी दी जानी चाहिए और हमारा गांव जो है वो ग्रामीण और सांस्कृतिक पर्यटन का आकर्षण बन सकता है। श्रोता, पर्यावरण पर्यटन का मतलब हमेशा किसी बड़ी इमारत को देखना नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसी जगहों का अनुभव करना चाहते हैं जहां उन्हें स्थानीय जीवन के करीब जाने का मौका मिले। हमारे गांव में आने वाला पर्यटक स्थानीय भोजन का स्वाद ले सकता है, पारंपरिक खेती को करीब से देख सकता है, स्थानीय हस्तशिल्प और कारीगरों को समझ सकता है, लोकगीत और लोक नृत्य का आनंद ले सकता है, पुराने ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों के बारे में जान सकता है, स्थानीय बाजार और उत्पाद देख सकता है, गांव की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकता है, स्थानीय लोगों से बातचीत करके उनकी जीवन शैली समझ सकता है। इस तरह गांव केवल देखने की जगह नहीं मनीषा, बल्कि अनुभव करने की जगह भी बन सकता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों हम देखते हैं कि आज जब पर्यटन का स्वरूप बदल रहा है तब लोग केवल बड़ी बड़ी इमारतें देखने की यात्रा नहीं करते हैं, वे स्थानीय जीवन को समझना, पारंपरिक भोजन का स्वाद लेना, लोकगीत सुनना, ग्रामीण जीवन का अनुभव करना और प्रकृति के करीब बिताना भी चाहते हैं। ऐसे में श्रोता साथियों हमारे गांव और उनकी संस्कृति पर्यटन की एक विशिष्ट पहचान बन सकती है। हम कह सकते हैं साथियों कि हमारी विरासत, हमारा गांव, हमारी संस्कृति, यही हमारी पहचान है। यदि हम अपनी विरासत को सुरक्षित रखते हुए उचित तरीके से पर्यटन से जोड़े तो श्रोता साथियों इससे गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं, स्थानीय कला परंपराओं को नई पहचान मिल सकती है और साथ ही अंजलि जी अपने युवा जोड़ों को जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा भी मिल सकती है।
1: बिल्कुल मनीषा, अगर यही बात करें हमारी संस्कृति को पर्यटन से जोड़ने का मतलब क्या है तो श्रोता साथियों इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को बदलकर पर्यटकों के अनुसार बना दें, बल्कि जरूरत है कि जो हमारे पास पहले से मौजूद है उसकी पहचान करें, उसे सुरक्षित रखें और सही तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। मान लीजिए कि हमारे गांव में कोई पुरानी बावड़ी है, उसके साथ कोई स्थानीय इतिहास जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में जानकारी तैयार की जा सकती है। अगर गांव में कोई विशेष पारंपरिक व्यंजन बनाया जाता है तो उसे स्थानीय स्वाद के रूप में पहचान मिल सकती है। अगर किसी परिवार या समुदाय के पास पारंपरिक हस्तकला है तो उसे आगे बढ़ाने के साथ साथ उसके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। यानी कि श्रोता साथियों हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी विशेषताओं को पहचानना ही हमारा पहला कदम है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी विरासत, हमारा गांव और हमारी संस्कृति बन सकती है पर्यटन की पहचान, इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं। तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगी कि जब किसी गांव में पर्यटन आने लगते हैं तो उनका लाभ केवल किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता, बल्कि अलग अलग लोगों को मिल सकता है। स्थानीय महिलाएं पारंपरिक भोजन, हस्तशिल्प या अन्य स्थानीय उत्पादों से आय का अवसर बना सकती है। युवा स्थानीय गाइड, फोटोग्राफी, परिवहन, डिजिटल प्रचार और छोटे पर्यटन व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। कारीगर अपने बनाए सामान को पर्यटकों तक पहुंचा सकते हैं। किसान अपने खेत, पारंपरिक बीज, खेती के तरीके और ग्रामीण जीवन से जुड़े अनुभव को लोगों के सामने रख सकते हैं। इस तरह पर्यटन रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक माध्यम बन सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि पर्यटन बढ़ाने की कोशिश में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी संस्कृति कोई सजावट की वस्तु नहीं है। हमारी संस्कृति कोई सजावट की वस्तु नहीं है। हमारे पुराने भवन, जल स्रोत, पेड़ पौधे, लोकगीत, बोली, पारंपरिक ज्ञान और रीति रिवाज हमारी सामूहिक विरासत है। अगर किसी पुराने स्थल पर कूड़ा फैलने लगे, दीवारों पर लिख दिया जाए या प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया जाए तो पर्यटन का उद्देश्य ही कमजोर हो जाएगा। इसलिए गांव को पर्यटन से जोड़ने के साथ साथ स्वच्छता, पानी की बचत, पर्यावरण संरक्षण और विरासत स्थलों की देखभाल पर भी ध्यान देना जरूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगी कि विरासत का अर्थ केवल पुराने किले, महल या ऐतिहासिक भवन नहीं है साथियों। हमारी विरासत में हमारे पूर्वजों से मिली जीवन शैली, परंपराएं, लोक ज्ञान, कला, भाषा, संगीत, रीति रिवाज, कृषि पद्धतियां, खान पान और प्राकृतिक संसाधन है, वो भी शामिल है। हमारे गाँव में आज भी कई ऐसी चीजें मौजूद है श्रोता साथियों जो पीढ़ियों से चली आ रही है। कई मिट्टी के बर्तन की कला है, कहीं लकड़ी का प्रसिद्ध काम है, तो कहीं श्रोता साथियों हाथों से बनी चादरें, कालीन, टोकरियां या आभूषण लोगों को आकर्षित करते हैं। कहीं पारंपरिक लोक नृत्य और लोक गीत है, तो कहीं श्रोता साथियों विशेष मेले और त्योहार है, वे गांव की पहचान है। हम देखते हैं कि पुराने कुएं, बावड़िया, तालाब, मंदिर, देवी स्थान, चौपाल, हवेलियां और पारंपरिक घर भी हमारी संस्कृति की विरासत के हिस्से है। इनके साथ ही श्रोता साथियों अनेक कहानियां और स्थानीय इतिहास भी जुड़े होते हैं। यदि इन्हें सुरक्षित करके पर्यटकों के सामने प्रस्तुत किया जाए अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि गांव का पर्यटन है वो मजबूत केंद्र बन सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि आज हमारे युवाओं के हाथ में मोबाइल है और सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी जगह की कहानी दूर तक वे पहुंचा सकते हैं। गांव के युवा अपने क्षेत्र की सुंदर जगहों, स्थानीय कला, भोजन, परंपराओं, लोक कलाकारों की जानकारी तस्वीरों और छोटे वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन प्रचार करते समय जानकारी सही होनी चाहिए और गांव की संस्कृति को दिखाने में सम्मान और संवेदनशीलता का भी ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, गांव की पहचान को दुनिया तक पहुंचाने का काम युवा कर सकते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान गांव के बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों, कारीगरों और स्थानीय समुदाय के पास सुरक्षित है। कह सकते हैं मनीषा कि गांव की संस्कृति को सबसे करीब से जानने वालों में महिलाएं भी शामिल है। पारंपरिक व्यंजन, लोकगीत, त्योहारों की तैयारियां, हस्तकला, पारंपरिक ज्ञान और घरेलू परंपराएं, इनमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर इन कौशलों को सम्मान और बाजार से जोड़ा जाए तो महिलाओं के लिए आय के नए अवसर बन सकते हैं। इसलिए ग्रामीण पर्यटन की योजना बनाते समय महिलाओं को केवल दर्शक नहीं बल्कि साझेदार और निर्णय लेने वाली भागीदारी बनना चाहिए। अच्छा पर्यटन गांव केवल सुंदर दिखाई देने वाला नहीं होता है मनीषा, वहां साफ रास्ते हो, कचरा प्रबंधन की व्यवस्था हो, पीने के पानी की सुरक्षित उपलब्धता हो, स्थानीय लोगों का व्यवहार सहयोगपूर्ण हो और आने वाले जो व्यक्ति हैं वो गांव की संस्कृति के बारे में सही जानकारी भी रख सकते हैं। पर्यटक जब गांव से वापस जाए तो वह केवल तस्वीरें लेकर न जाए बल्कि गांव की एक अच्छी याद और उसकी संस्कृति के प्रति सम्मान लेकर भी जानी चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां की संस्कृति केवल पुस्तकों या संग्रहालयों में बंद नहीं होती, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन में दिखाई देती है। सुबह खेतों की ओर जाते किसान, पशुपालन, पारंपरिक कृषि उपकरण, घरों में बनने वाला स्थानीय भोजन, महिलाओं की हस्तकलाएं, बच्चों के खेल, बुजुर्गों की लोक कथाएं और त्योहारों की जो सामूहिक तैयारी होती है, ये सभी ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा होते हैं। हम देखते हैं कि शहरों में रहने वाले लोग अक्सर ऐसे जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। यदि गाँव में जिम्मेदारी और योजनाओं के साथ ग्रामीण पर्यटक विकसित किए जाए साथियों, तो पर्यटन कुछ दिन गाँव में रहकर स्थानीय जीवन को करीब से समझ सकते हैं। यह अनुभव केवल पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि गांव के लोगों को भी उनकी संस्कृति और उनके महत्व का एहसास कराएगा। जब किसी स्थानीय कला परंपराओं को बाहर से सम्मान मिलता है, तो हम देखते हैं श्रोता साथियों कि नई पीढ़ी भी उससे सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती है।
0: बिल्कुल मनीषा, यही श्रोता साथियों से हम कहना चाहेंगे कि हमारी विरासत किसी संग्रहालय में बंद चीज नहीं है, वह हमारे घरों में है, हमारे खेतों में है, खेतों में है, हमारी बोली में है, हमारे गीतों में है, हमारे स्वाद में है और उन कहानियों में है जिन्हें हमारे बुजुर्ग आज भी याद करते हैं। कई बार हमें अपने आसपास की वही चीजें साधारण लगती हैं जिन्हें बाहर से आने वाला व्यक्ति बहुत खास मान सकता है। जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं किसी दूसरे के लिए वह गाँव की खूबसूरत तस्वीर बन सकती है। जिस पारंपरिक भोजन को हम घर का सामान्य खाना समझते हैं, वही किसी पर्यटक के लिए नए स्वादिष्ट का अनुभव हो सकता है। जिस लोकगीत को हम बचपन से सुनते आए हैं, उसमें हमारे इतिहास और जीवन की ऐसी कहानी छिपी हो सकती है जिसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। इसलिए पर्यटन की शुरुआत हमेशा किसी बड़ी योजना से नहीं होती है, कभी कभी शुरुआत अपने गांव को नए नजरिए से देखने से होती है। हमें अपने गाँव की खासियत को पहचानना होगा, उन्हें सुरक्षित रखना होगा और नई पीढ़ी को उनसे जोड़ना भी होगा, क्योंकि मनीषा ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटन आए तो हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिक एकता को कमजोर न समझें, बल्कि उसे और मजबूत बनाए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि ग्रामीण संस्कृति की पहचान श्रोता साथियों लोकगीतों लोक नृत्यों के बिना भी अधूरी है। हर क्षेत्र के अपने गीत, वाद्य यंत्र, नृत्य और कथाएं होती हैं। विवाह, फसल कटाई, त्योहार और धार्मिक अवसरों पर श्रोता साथियों गाए जाने वाले लोकगीत हैं वो हमारी संस्कृति की स्मृति का हिस्सा होते हैं। पर्यटन के माध्यम से इन लोक कथाओं को मंच मिल सकता है। गाँव में आने वाले पर्यटकों के लिए स्थानीय कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इससे श्रोता साथियों कलाकारों को आय मिलेगी और लोक कथाएं भी जीवित रहेंगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि लोक कथाओं को केवल मनोरंजन का साधन न बनाया जाए, बल्कि उनकी मौलिकता और गरिमा को भी बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। कलाकारों को उचित सम्मान और पारिश्रमिक जो होते हैं उनको भी सम्मान मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे हमारी विरासत, हमारा गांव और हमारी संस्कृति बन सकती है पर्यटन की पहचान को लेकर। यहीं अगर अंजलि जी बात करें कि प्राकृतिक सुंदरता और ग्रामीण पर्यटन को लेकर, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि गाँव की पहचान केवल संस्कृति से नहीं है बल्कि प्रकृति से भी जुड़ी हुई है। खेती, पेड़ पौधे, तालाब, नदियाँ, पहाड़, चारागाह, पक्षी और ग्रामीण परिदृश्य जो है श्रोता साथियों, पर्यटन को आकर्षक बनाने का कार्य करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आज भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शांत वातावरण की तलाश करते हैं। गाँव में श्रोता साथियों, उन्हें प्रकृति के करीब रहने का अवसर मिलता है। सुबह सूर्योदय को देखने मिलता है, खेतों में घूमने मिलता है, तालाब के किनारे बैठना, स्थानीय पेड़ पौधों को समझना और ग्रामीण जीवन को महसूस करने का एक अलग प्रकार का अनुभव होता है।
1: बिल्कुल मनीषा, जब हम अपने गाँव की ओर देखते हैं तो हमें केवल खेत, घर, रास्ते और बाजार दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई से देखें तो इन्हीं चीजों के बीच हमारे पूर्वजों की मेहनत, उनकी समझ, उनकी जीवन शैली की पूरी कहानी दिखाई देती है। गांव का कोई पुराना कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं होता, वह कभी पूरे समुदाय के जीवन का केंद्र रहा होगा। कोई पुराना पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की यादों का साक्षी हो सकता है। कोई पारंपरिक गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि इतिहास, भावना और सामूहिक जीवन की आवाज हो सकता है। इसलिए हमारी विरासत की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वह हमारे जीवन से अलग नहीं है बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा ही है। आज जरूरत है कि हम अपने आसपास की उन चीजों को पहचाने जिन्हें समय के साथ हम सामान्य समझने लगे हैं। गांव के बुजुर्गों से स्थानीय इतिहास सुनना, पुराने स्थानों की जानकारी जुटाना, पारंपरिक कला, शिल्प और दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखना, स्थानीय व्यंजनों की विविधता को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना और अपनी बोली भाषा को सम्मान देना, ये छोटे कदम आने वाले समय में बहुत बड़ी सांस्कृतिक पूंजी बन सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के डिजिटल युग में श्रोता साथियों, किसी भी स्थान की पहचान केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहती है। सोशल मीडिया, वेबसाइट, वीडियो, डिजिटल मैप के माध्यम से गांव की विशेषताएं वो दूर दूर तक पहचानी जा सकती हैं। युवा अपने गांव के प्राकृतिक स्थलों, हस्तशिल्प, लोक कलाओं, भोजन और त्योहारों के छोटे छोटे वीडियो बनाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा भी कर सकते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, जानकारी सही, सम्मानजनक और स्थानीय समुदाय की अनुमति के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि डिजिटल प्रचार के साथ ही श्रोता साथियों पर्यटकों के लिए जरूरी जानकारी जैसे कि पहचानने का मार्ग, रहने की सुविधा, स्थानीय नियम और संपर्क विवरण भी उपलब्ध करवाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ मनीषा, अगर किसी गांव में पर्यटन से अगर हम उसे जोड़ते हैं तो सबसे पहले वहां के लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि यह गांव हमारा है और इसकी पहचान भी हमारी जिम्मेदारी है। बाहर से आने वाला व्यक्ति हमारे गाँव को तभी समझ पाएगा जब हम खुद अपनी विरासत को समझेंगे और उसके महत्व को पहचानेंगे। और पर्यटन का अर्थ केवल पर्यटक बुलाना नहीं है, असली उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ आने वाला व्यक्ति स्थानीय जीवन का सम्मान करे और गांव के लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करने को मिले। पर्यटक आए, स्थानीय चीजें खरीदे, स्थानीय लोगों की सेवाएं ले, स्थानीय भोजन का अनुभव करे तो गाँव में पैसा भी घूमेगा और लोगों का जो हुनर है उसे भी पहचान मिलेगी। लेकिन मनीषा, विकास की इस प्रक्रिया में संतुलन सबसे जरूरी है। यानी कि दोस्तों, हमारी पहचान किसी कीमत पर केवल दिखावे में नहीं बदलनी चाहिए। तालाब साफ रहे, ऐतिहासिक स्थान सुरक्षित रहे, प्लास्टिक और कचरे जो हैं वो नियंत्रित हो, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान हो और स्थानीय संस्कृति को उसकी वास्तविकता के साथ प्रस्तुत किया जाए, तभी पर्यटन लंबे समय तक टिकाऊ बन पाएगा।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि पर्यटन श्रोता साथियों तभी लाभदायक होते हैं जब लंबे समय तक वो टिकाऊ हो। यदि बड़ी संख्या में पर्यटन किसी गांव में पहुंचे, वहां कचरा फैलाए, जल स्रोतों पर दबाव बनाए रखे और स्थानीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाए, तो श्रोता साथियों पर्यटन की समस्या है वो बन सकती है। इसलिए गाँव में जिम्मेदार पर्यटन की व्यवस्था आवश्यक है। प्लास्टिक का उपयोग कम हो, कचरा प्रबंधन हो, जल संरक्षण हो, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए और स्थानीय संसाधनों का उपयोग ही वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील व्यवहार के साथ किया जाए। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि पर्यटकों को भी स्थानीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। फोटो या वीडियो बनाने की अनुमति लेनी चाहिए। स्थानीय समुदाय की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और पर्यटन का हिस्सा ही उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, आज का युवा इस बदलाव में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। वह अपने गांव की कहानी कैमरे में कैद कर सकता है, बुजुर्गों की यादें रिकॉर्ड कर सकता है, स्थानीय कलाकारों का परिचय लोगों तक पहुंचा सकता है और अपने गांव की खासियत को डिजिटल माध्यम से दुनिया के सामने रख सकता है। वहीं बुजुर्ग पीढ़ी अपने अनुभव और परंपराओं का ज्ञान युवाओं तक पहुँचा सकती है। श्रोता साथियों, जब अनुभव और तकनीक एक साथ आते हैं तब विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का रास्ता और मजबूत होता है। और शायद सबसे जरूरी बात, हमें अपनी विरासत को केवल इसलिए नहीं बचाना चाहिए कि उससे पर्यटक आएंगे, हमें उसे इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि वह बताती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और किन मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पर्यटन उससे मिलने वाला एक अतिरिक्त अवसर हो सकता है, लेकिन हमारी संस्कृति की असली कीमत किसी टिकट दुकान या बाजार से तय नहीं होती।
0: जी हाँ।
1: तो आइए श्रोता साथियों, आज से अपने गांव को सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी की जगह मानकर न देखें। कई बार किसी मेहमान की नजर से अपने गांव को देखने की कोशिश करें और सोचें कि हमारे यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो दूसरे स्थान पर शायद देखने को न मिले। कौन सी कहानी है जिसे कभी अभी तक लिखा नहीं गया है, कौन सी ऐसा हुनर है जिससे अगली पीढ़ी को सीख मिल सकती है और कौन सी ऐसी जगह है जिसे हम मिलकर सुरक्षित कर सकते हैं। शायद पर्यटन की एक नई पहचान हमारे गांव के बाहर कहीं खोजने की जरूरत ही नहीं हो। शायद वह पहचान हमारे आंगन में, हमारे खेत में, हमारे लोकगीत में, हमारे स्वाद में और हमारी सामूहिक यादों से पहले भी मौजूद हो सकती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी विरासत, हमारा गांव, हमारी संस्कृति बन सकती है पर्यटन की पहचान को लेकर, इस विषय को लेकर हमने ढेर सारी बातें की हैं। कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि जिम्मेदार पर्यटन और टिकाऊ पर्यटन हम कैसे बना सकते हैं और साथ ही हमने जाना कि डिजिटल माध्यमों से हमारे गाँव की पहचान है उसे हम कैसे दूर दूर तक फैला सकते हैं। तो ढेर सारी बातों को जाना और कुछ महत्वपूर्ण बातें रह गई हैं हमारे श्रोता साथियों से, तो वो आगे भी हम ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि पर्यटन को लेकर ढेर सारी बातें हम जान रहे हैं आज कार्यक्रम के माध्यम से, यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि किसी गांव की असली पहचान उसके आकार से नहीं होती, उसकी पहचान जो है वो उसकी मिट्टी से होती है। लोगों के जीवन में उनकी कितनी परंपराएं उन्होंने शामिल की है, आने वाली पीढ़ी के लिए कितना कुछ बचा कर रखा गया है, यही वजह है कि हमें अपनी विरासत को केवल पुराने समय की निशानी समझने के बजाय आज के समय की ताकत के रूप में देखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: हमारे गांव में अगर कोई पुराना घर है, कोई ऐतिहासिक जगह है, या कोई पारंपरिक कला है, कोई खास पकवान है, कोई लोकगीत है, या कोई ऐसी परंपरा है मनीषा जिसे हमारे बुजुर्ग वर्षों से निभाते आ रहे हैं, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कहानी या अनुभव अवश्य छुपा होगा।
1: जी हाँ।
0: उस कहानी को सुनना, समझना और अगली पीढ़ी तक पहुँचाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। कई बार विकास की दौड़ में हम सोचते हैं कि आगे बढ़ने के लिए पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना जरूरी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई सोच और पुरानी जड़ों को साथ लेकर भी आगे बढ़ा जा सकता है।
1: जी हाँ।
0: आधुनिक तकनीक हमारे गांव की तस्वीर दुनिया तक पहुंचा सकती है और हमारी परंपरा उस तस्वीर को अपनी अलग पहचान दे सकती है। गाँव के युवा मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करके स्थानीय कला और संस्कृति की जानकारी साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: महिलाएं अपने पारंपरिक हुनर और खान पान को नए अवसरों से जोड़ सकती है। कारीगर अपने हाथों से बने सामान को नए बाजार तक पहुंचा सकते हैं। किसान अपने खेती के अनुभव और स्थानीय ज्ञान को लोगों के सामने रख सकते हैं। बुजुर्ग अपनी स्मृति और कहानियों से युवाओं को वो इतिहास बता सकते हैं जो किताबों में शायद कभी दर्ज नहीं हुआ है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं श्रोता साथियों कि ग्रामीण पर्यटन शिक्षा का भी माध्यम बन सकता है। विद्यार्थी गांव की संस्कृति, पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, लोक कला और ऐतिहासिक प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। स्कूल और कॉलेजों में ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किए जा सकते हैं। विद्यार्थी स्थानीय कारीगरों से हस्तशिल्प सीख सकते हैं। किसानों से पारंपरिक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बुजुर्गों से लोक कथाएं भी सुन सकते हैं। इससे अंजलि जी हम देखते हैं कि शिक्षा केवल किताबों से निकलकर वास्तविक जीवन से भी जुड़ सकती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारी विरासत को केवल पर्यटन की पहचान बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी विरासत को हमारी विरासत का हमें सम्मान करना चाहिए। केवल बाहरी पर्यटकों को आकर्षण करना पर्याप्त नहीं है, स्थानीय लोगों की भागीदारी, सहमति और लाभ सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। हमें अपने गांव की विशेषताओं की पहचान करनी चाहिए। कौन सी कलाएं विशेष हैं, कौन सा पारंपरिक भोजन प्रसिद्ध है, कौन सी ऐतिहासिक स्थान महत्वपूर्ण है और कौन से त्योहार और मेले अपनी पहचान रखते हैं, और साथियों कौन से प्राकृतिक स्थल जो लोगों को आकर्षित करते हैं, इन सवालों के जवाब खोजकर गांव की एक स्थानीय पर्यटन की जो योजना है वो बनाई जा सकती है।
0: बिल्कुल मनीषा, एक और महत्वपूर्ण बात है कि गांव में आने वाले हर व्यक्ति को मेहमान की तरह सम्मान मिले, लेकिन गाँव के लोगों के अधिकार और सुविधा भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहे। पर्यटन ऐसा हो जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो, स्थानीय उत्पादों को अवसर मिले और गाँव की प्रकृति पर अनावश्यक दबाव न पड़े। हमें ये भी देखना होगा कि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति को केवल किताबों में पढ़े नहीं बल्कि उसे अपने आसपास महसूस भी करें। वे जाने कि उनके गांव की कोई खास बोली क्यों महत्वपूर्ण है, कोई लोकगीत किस प्रकार और किस अवसर पर गाया जाता है, कोई पारंपरिक व्यंजन कैसे बनाया जाता है, किस पुराने स्थान का इतिहास क्या है और उनके पूर्वजों ने किस परिस्थिति में उनका जीवन बनाया है। क्योंकि जिन बच्चों को अपनी जड़ों की जानकारी होती है वह अपनी पहचान को लेकर अधिक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, और जब वही बच्चा बड़ा होकर अपने गाँव की कहानी किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाता है तो वह अनजाने में अपनी संस्कृति का दूध बन चाहता है। इसलिए आज हमें केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि हमारे गांव में पर्यटन कैसे आया, बल्कि हमें यह पूछना चाहिए कि हम अपने गांव को ऐसा कैसे बनाएं जहां आने वाला व्यक्ति हमारे जीवन और संस्कृति को समझ कर लौटे। यही सोच पर्यटन को केवल घूमने फिरने से आगे ले जा सकती है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि परंपराओं को बचाने का अर्थ यह नहीं है श्रोता साथियों कि हम विकास से दूर हो जाएं।
0: बिल्कुल।
1: गांव में सड़क, इंटरनेट, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो भी बहुत जरूरी होती हैं। आधुनिक सुविधाओं और पारंपरिक संस्कृति के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए श्रोता साथियों, पारंपरिक घरों को उनकी मूल शैली में रखते हुए उन्हें आवश्यक स्वच्छता और सुविधा भी विकसित करनी करनी चाहिए। इसी प्रकार स्थानीय भोजन और हस्तशिल्प को आधुनिक पैकेजिंग और डिजिटल बाजार से जोड़ा जा सकता है। इस तरह परंपरा और तकनीकी के साथ साथ आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि हमारी विरासत केवल अतीत की याद नहीं है बल्कि हमारे भविष्य की संभावना भी बन सकती है। हमारे गाँव में इतिहास है, संस्कृति है, प्रकृति है, कला है, लोक ज्ञान है और लोगों की मेहनत है। यही विविधता ग्रामीण भारत को विशेष बनाती है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: अब समय हो चला है हमारे आज किस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वराय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार। साथ ही श्रोता साथियों आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

ये जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारा आपके साथ गीतों का, संगीतों का, फरमाइशों का सिलसिला चलता है श्रोता साथियों, सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं, आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुँचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहाँ से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहाँ का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मैं बढ़ना चाहूँगी हमारी पहली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, पहली फरमाइश हमारे बीच आई है कश्मीर से। बताना चाहूँगी, फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं फैज़ारा मिराजुद्दीन, नज़मुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। इन श्रोताओं की फरमाइश है रज़िया सुल्तान फिल्म का गीत ए दिले नादान। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। और भी दोस्त हमारे इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूँगी। साथी जुड़ रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं, लोरमे चिचड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्परा, ऋषभ मरावी जी। साथी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं सहारनपुर से सैयद मसूर, साइना अक्सा, नाजमा आफिया, इब्राहिम सद्दाम जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश की इस गीत को, गीत के बोल हैं ए दिले नादान। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: इतनी स्टाइलिंग, इतनी हीट, इतनी शूट्स, बाल तो झड़ते ही हैं। हम सब सोचते हैं कि चलता है, नहीं चलता।
1: जब मैंने जेन्युइनली ढूंढा एक सोल्यूशन, आई फाउंड दिस सेसा आयुर्वेदिक ऑयल। 18 आयुर्वेदिक हर्ब्स, 5 ऑयल्स और ये 22 घंटे तक प्योर काउज मिल्क में पकाया जाता है।
0: मैंने भी यूज

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हो चुका है, तो मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है वसीम महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है गुलामी, गीत के बोल हैं जिहाल मस्किन। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर विठल सुरोशे सुषमा सुरजे परिजे सुरोसे मायरा सुरोसे जी, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र मनहरण वर्मा जी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। इस्लामपुर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल, अमोल मानकर, शुभाताई मानकर, श्लोक दीपाली जी। पतरिया छत्तीसगढ़ से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम जी। सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा, और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी श्रोता साथियों, नवाशहर पंजाब से हैं गंगनदीप थाटी, तीता कुमारी थांडी, प्रशांत थांडी, प्रियम वाइमिका और वाणी थांडी जी। अमरावती महाराष्ट्र से जुड़ रहे सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने, पय प्रसिद्धि हीरामन शिंडे, प्रतिभा गुणाने जी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से है रामचंद्र विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रजना बदना प्रियल दिव्यांशी विश्वकर्मा जी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूर्ण गंगनेजा, विशाल प्रिया, दिशाली निमित आहूजा जी। तो आइए साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जिहाले मस्किन मुकम बरंजिश। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की और अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, आपको बताना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ कोरबा से फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, बजरंगी भाईजान गीत के बोल हैं भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमाला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानू शानू, बब्बन मनहू, काना ठाकुर और हरिप्रिया जी। आगरा से जुड़ना चाह रहे हैं सरद्या चौरसिया, सूरज चौरसिया, सुमित चौरसिया, अबीर और वीर चौरसिया जी। कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, पीहू दीहा चौरसिया जी। और भी हमारे श्रोता साथी है जो जुड़ रहे हैं, शिवानी कुमारी सिन्हा, प्रियंका कुमारी साहू, गुड्डू कुमार, गुड्डी जी, रिम्मी, तनुषी, रिया जिया, टूशी और आयुषी जी, अनिरुद्ध जी और शिव मंदिर चौक अजनपुर से हैं बसंतलाल जी, मुन्नी देवी जी, जय प्रकाश साहु, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता, अभय कुमार सनातनी और बी के सिन्हा जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा निशा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन साहू जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं बाटावरा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चामला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, वेदई जोशी, वीरेंद्र अग्रवाल, रानू अग्रवाल, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर जी और पूनम नायडू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं आपको नाम बताना चाहूंगी, पंडरपुर सिटी से हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशा शिंदे, शिशिंदे, कृष्णा घोड़के जी। कॉपरगांव से सुरेश मालोड़े, वर्षा मालोड़े, श्रद्धा मालोड़े, मानसी मालोड़े जी। बागपत यूपी से जुड़ना चाह रहे हैं आसिफ अली खान, मोमिना नास, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान। और भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं बागपत यूपी से जगमोहन सिंह बजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बेटी अंजलि, नितिन जगमोहन जी, भुवनेश्वरी देवी जी, सुधीर नूतन, रामदान कश्यप। और दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं भर दो झोली मेरी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी, बुलढाणा महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं मराठा से, महाराष्ट्र से। कुमारी वंदना मराठा, मराठा गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, लक्ष्मी ललिता, सत्यनारायण भाऊ खड़ से, रक्षाताई निखिल खड़ से, स्वाति प्रयागराज चौधरी, लड्डू देविका चौधरी और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूँगी, नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, रजन शाह, सुषमा कपूर जी। मजनू का टल्ला से हैं कमल बालूजा, मजू बालूजा, सागर बालूजा, उम मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन कर रहे हैं। लादावली से हैं मुरादाबाद से अजित कन्हैया कसाना, मया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना जी। बोरखरा पित्रामल से हैं विनोद मोड़न, नेहा जैन, दीपक मयक मोड़त, चेतन नाटा, दीक्षा कुश मोड़त, दिलीप सिंह पंवार जी। रघुवीर नगर से जुड़ना चाह रहे दिलावर खान, हसीना बानो, इलियाज नायब, लड्डू जी। और भी श्रोता साथी गंजुडवारा से जुड़ना चाह रहे हैं शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, अंसारी जी। गाजीबाद से शिषपाल अकेला, तेजपाल प्रजापति जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो, मानस राज। और भी दोस्त हमारे जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया जी। सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजे डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलेज डिकेस्टो जी। और भी श्रोता साथी हैं जो संजय कॉलोनी खंडवा से जुड़ रहे हैं अब्दुल गफार डावर, खुशसिप अब्दुल हक डावर, जियाउल अब्दुल रहमान डावर, कादर डावर, सोहन जोशी छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। सिरसा हरियाणा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक, सचिन शर्मा, रोहित शर्मा जी। और भी दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। बाटारपारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोकेलाल वर्मा जी। और भी साथी जुड़ रहे अकोला से सुजला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गुरु मंदुरकर। यवतमाल से हैं निशा रानी नागरिकर, नीलेश नागरिकर, आरव अर्पिता जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। तब तक आप बने रहिएगा वाकर रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों लूटमार, गीत के बोल हैं जब छाए मेरा जादू। फरमाइशकर्ता कुप्टी महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। बंडू लोहार, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलगढ़, देवीदास पोपलगढ़, बंडू पोपलगढ़ जी। और भी श्रोता साथी जज्जर हरियाणा से है, बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया जी। लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। ताजमहल अंसारी, गुलाम शाबी रही, मेहराज जहां। और भी दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जब छाए मेरा जादू। तब तक आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया, गीत के बोल हैं हवा हवाई। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं मराठवाड़ा से सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, जगुताई राजे यादव, देशमुख जी, प्रणाली देशमुख, सरवत देशमुख जी, और भी हमारे श्रोता साथी भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, और भी श्रोता साथी हैं जो जुड़ रहे हैं। मुंगी पेठण महाराष्ट्र से बाबा साहेब कगणकर, सागरबाई कगणकर, परमेश्वरी रोहिणी सागरबाई कगणकर, और भी हमारे साथी जुड़ना चाहे जाकोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुनलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक, और भी दोस्त से जुड़ना चाह रहे हैं मुंडा टोला डोरी लहारा से है दौमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिर नेताम जी, और भी साथी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से ही जुड़ रहे हैं उदयन पाल, जैन पाल, दीक्षा प्रतीक्षा, ममलेश पाल, दिव्यांश बघेल। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं हवा हवाई। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पाराशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है आकोट से। फिल्म का नाम है आशा, गीत के बोल ही शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता ही विनायक भिंडी, श्रीमती मंगला जी भिंडी, विजय शुभम जरिए, पवन जरिए, सजीव जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, ये तला महाराष्ट्र से शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शिवप्रसाद जयसवाल, अपनव जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जयसवाल, तृप्ति जी जयसवाल। इस गीत के अनुरोध करता है नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर, सोपान तावड़ी और नारायण इगले जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है आशा, गीत के बोल ही शीशा हो या दिल टूट जाता है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कुंभार गली कुलगांव से। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी, गीत के बोल हैं जाने क्यों लोग। इस गीत की फरमाइश करता है पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक जी चंदन, रत्मेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसार सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। इस गीत की अनुरोध करता है सहारनपुर से समेद मशरूम, साइना हसन, आगसनाजिया, आफिया और इब्राहिम सदाम जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी, गीत के बोल हैं जाने क्यों लोग मोहब्बत। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी, गीत के बोल हैं फूलों के रंग से। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे पंडितपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घुड़के जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवगाना, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूनाराम देवगाना, कृष्णा देवगाना। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रंजत रजक जी, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हशी, यश और सोम्या जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी, गीत के बोल हैं फूलों के रंग से। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सब बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पथरोट से। फिल्म का नाम है दिलवाले, गीत के बोल हैं सातों जन्म तेरे। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है विजय अंबाटेकर, सुनीता अंबाटेकर, अक्षय अंबाटेकर, राधिका अंबाटेकर, ऋषिकेश जी अंबाटेकर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, यवतमाल सी, जंगुताई लोखंडे, रामहरी लोखंडे, अमिता लोखंडे, सूरत लोखंडे, शुरमित लोखंडे। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती सी, श्याम केटी, वंदना केटी, कार्तिक केटी, भाविका जी केटी। सदर बाजार भिलाड़ा राजस्थान से जुड़ना चाह रहे हैं रमेश चंद्र चौहान, जी नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वाकई रेडियो 90.8 FM पर।

आइए साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है सनम बेवफा, गीत की बोल ही ओ हरे दुपट्टे वाली। इस गीत की फरमाइश करता है गुणवश श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास, बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमी सोमो और मानस सिंह राज। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, यूपी सिंह, सुरेश चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सबोस सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, पूजा पिंकी चौरासिया, बाबू शिवा शिवानी चौरासिया। इस गीत के अनुरोध करता है दिल्ली से रविंद्र सिंह चावड़ा, इंद्रजीत चावड़ा और स्वीटी जी चावड़ा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है सनम बेवफा, गीत के बोल हैं ओ हरे दुपट्टे वाली। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे ओ हरे दुपट्टे वाली। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कलकत्ता से। फिल्म का नाम है कन्यादान। गीत के बोल ही मेरी जिंदगी में आती तो कोई और बात होती। इस गीत की फरमाइश करता है वसंत कुमार सिंहा, रेखा दी वी, अजय कुमार गुप्ता, रश्मि अनुश्री गुप्ता। तिलैया से जुड़ना चाह रही हैं अभय कुमार, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, शाहू, रिया, जिया, तुषी, आरुषी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी, जयप्रकाश शाव, बसंत शाव, हरी मोती और पन्नालाल जी शाव। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, दिशानी निमित आहूजा जी। इस गीत के अनुरोध करता है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं मुरादाबाद से अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य जी कसाना। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल ही मेरी जिंदगी में आती तो कुछ और बात होती। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागा रेडियो 90.8 FM पर।

आइए साथियों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कलानूर से। फिल्म का नाम है ए दिल है मुश्किल, गीत के बोल हैं बुलैया। इस गीत की फरमाइश करता है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोर्ड, अंकित जी कांगड़ा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं गंजडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी, नवजा बेगम हाशमी, तोसीफ हाशमी, तोइनूर हाशमी और कलीम अंसारी जी। इस गीत की अनुरोध करता है नेहरू चौक पेठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जी जाधव, एकता जी जाधव और संगीता जी जाधव। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है ए दिल है मुश्किल और गीत के बोल हैं बुलैया। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुलापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है अनाड़ी। गीत के बोल ही क्या मौसम आया है। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरा, नरगिस जी खातून। सलार पलगाम से जुड़ना चाह रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं गंजुरवारा से। मास्टर खिल्लू परवीज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी और राधा नामदेव जी। वासिम महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायरा जी सुरुषी। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हिमांश कुमार चंदन और सौगात हमतरी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बुलंदशहर से मोहम्मद सहीद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरुद्दीन अब्बासी, सोहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अभांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है झारखंड से याशिन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत जी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है अनाड़ी। गीत के बोल है क्या मौसम आया है। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी ही सरगांव छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु, गीत के बोल हैं झिलमिल सितारों का आंगन। इस गीत की फरमाइश करता है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जैन मंदिर वाले गली कुरावली से साहिद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नूरिन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेकजी अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है लोरमी चजेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोहिनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। इस गीत के अनुरोध करता है बरेली से मोहम्मद यासिर अंसारी, नसी अंसारी, शमशील अंसारी, समा अंसारी, महिनूर अंसारी, शमशुल कमर राही जी। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं आगरा से श्रीमती सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया, वीर और अभिरची चौरासिया। कानपुर से जुड़ रहे हैं श्रीमती सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीहू और दियाजी चौरासिया। इस गीत के अनुरोध करता है जाफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, जंगुताई राज यादव, कुमार, सचिन देशमुख, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, हर्षिता देशमुख, सानवी देशमुख और प्रणाली जी देशमुख। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, छन्नूला श्रीवास, रंजन शाहू जी। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, वीरेंद्र अग्रवाल, रानू अग्रवाल, लोके जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, बेबी वेदई जोशी, बेबी हंसिका जी जोशी। बस्तर से जुड़ना चाह रही हैं पूनम जी नायडू, खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ रही अब्दुल गफार डावर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रही बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, संजयोगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत की बोल है झिलमिल सितारों का आंगन। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। और श्रोता साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

तो साथियों ये तो थी हमारी आज की सभा जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी अगली सभा में, तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार आदाब और सत श्री अकाल।

सुबह संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए। और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को भुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे मीठी यादें। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर हमारे अगले एक खास और रंगों से भरे कार्यक्रम घूमर की ओर, क्योंकि साथियों, राजस्थान की संस्कृति में घूमर केवल एक लोक नृत्य नहीं, बल्कि नारी की खुशी, सम्मान और परंपरा का सुंदर प्रतीक है। इसी परंपरा और नारी शक्ति को समर्पित है हमारा यह विशेष कार्यक्रम घूमर, जहां महिलाओं से जुड़ी बातें, उनकी प्रतिभा, अनुभव और जीवन की प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाई जाती है। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं, इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में।

0: आज के सुविचार।
1: उसके भोजन से फल संग्रहित होता है, क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। राधे राधे। भय, भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेके ही जन्म लेता है। तो इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जन्म लेते हैं? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जाने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने को प्रेरित करता है। किंतु यह भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना होगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं, अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए। और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना

0: छोड़ दोगे, तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओ। राधे राधे।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तो की एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरी निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
3: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो चुनो।

आबहवा, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: साथियों लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं, जीवन में हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जीवन एक विशाल दर्पण की तरह है। हम दुनिया के सामने जो भाव, जो शब्द, जो कर्म रखते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यह प्रकृति का एक ऐसा नियम है कशिश, जो न दिखता है और न ही सुनाई देता है, पर हर पल काम करता रहता है। जैसा कि श्रोताओं, जो बोएगा वैसा ही हम काटेंगे, यही कहावत सिर्फ खेती के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए सच है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले गीत सुन ले हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,
2: टूटा टूटा एक पर...

0: आएगा। साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि जीवन में आप जो देते हैं वही वापस पाते हैं। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि हमारा मानव जीवन एक गहरा दर्पण है।
1: जी हाँ,
0: हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं और जैसा व्यवहार करते हैं, जीवन हमें वैसा ही लौटा कर देता है। और जैसा कि आपने गीत से पहले बताया था कि यही कर्म का सिद्धांत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि श्रोता साथियों, व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। कहा जाता है कि ये सिद्धांत केवल धार्मिक या फिर दार्शनिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह व्यवहारिक और जीवन के हर क्षेत्र में लागू होने वाला एक सत्य है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि मनुष्य अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने कर्मों के माध्यम से अपनी वास्तविक दुनिया तैयार करता है। जब हम किसी के प्रति सम्मान, प्रेम, सहयोग या सत्य निष्ठा देते हैं,
0: बिल्कुल
1: सकारात्मकता कई गुना बढ़कर हमारे जीवन में वापस लौट आती है।
0: जी हाँ,
1: वहीं अगर हम कटुता, स्वार्थ या बुराई फैलाते हैं तो उसके परिणाम भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते ही है। यही कारण है कि महान विचारकों ने कहा है कि जीवन प्रतिध्वनि है, जो हम भेजते हैं वही लौटता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, हम जो करते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। एक किसान खेत में गेहूं बोकर चावल की उम्मीद नहीं कर सकता कशिश। उसी तरह श्रोताओं, हर मन में नफरत, ईर्ष्या और आलोचना भरकर जीवन में शांति, सम्मान और सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कर्मों का यही नियम कहता है कि आपका हर छोटा बड़ा काम आपके जीवन की कहानी लिख रहा है। अगर हम दूसरों को खुशियाँ देते हैं तो जीवन हमें खुशियों के नए कारण देता है।
0: बिल्कुल,
1: उदाहरण के तौर पर श्रोता साथियों, आपको बताएं कि किसी ऑफिस में दो कर्मचारी साथ में काम करते हैं। एक हर किसी से मुस्कान से बात करता है, मदद करता है और सभी का सम्मान करता है।
0: जी।
1: दूसरा हमेशा शिकायत करता है और दूसरों को नीचा दिखाता है। कुछ महीनों बाद पहला जो कर्मचारी है कशिश, सबकी पसंद बन जाता है और उसे टीम लीड की जिम्मेदारी मिलती है, जबकि दूसरा अकेला रह जाता है। कारण साफ है, जीवन वही लौटाता है जो हम देते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं साथियों, हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, प्यार मिले और सहयोग मिले और साथ ही सफलता भी मिले।
1: जी हाँ,
0: लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि इन सबको पाने का पहला कदम हमें खुद देना होता है। यदि हम मुस्कुराकर बात करें, लोगों की मदद करें, दिल से शुभकामनाएं दें और दूसरों की खुशियों में खुद खुश होएं, तो जीवन भी हमें वही ठीक भावनाएं श्रोता साथियों अवश्य लौटा कर देगा। हम देखते हैं कि हमारे कर्म हमारी पहचान बनाते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं, अच्छे काम करते हैं और नेक नीयत से आगे बढ़ते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक बन जाता है।
1: जी हाँ,
0: इसके अलावा यदि किसी के मन में ईर्ष्या, नफरत या फिर बुरे विचार हैं जागृति जी, तो वही ऊर्जा उसके जीवन में वापस लौट कर आ जाती है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, देख सकते हैं कि अच्छे कर्म का मतलब है सकारात्मक परिणाम और बुरे कर्म का मतलब है नकारात्मक परिणाम। और यही सिद्धांत प्रकृति का अटल नियम है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि जब हम किसी की बिना मतलब मदद करते हैं तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं हमारे जीवन को सुंदर बना देती है।
1: जी हाँ,
0: शायद वही श्रोता साथियों, मदद किसी और के रूप में किसी और समय पर हमें वापस मिल जाती है, कभी संयोग रूप में तो कभी अवसर के रूप में और कभी किसी अनजान व्यक्ति की सहायता के रूप में।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि दया का दिया हुआ दीपक कभी अंधेरा नहीं लौटाता।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम सिर्फ कर्म ही नहीं विचार भी भेजते हैं। सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति अवसर ढूंढ लेता है, जबकि नकारात्मक सोचने वाला हर जगह समस्या देखता है। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे भीतर एक सकारात्मक कंपन पैदा होता है, जो हमारे व्यक्तित्व, निर्णय और संबंधों को बेहतर बनाता है। श्रोता साथियों, धीरे धीरे वही सकारात्मकता हमारी तरफ वापस आकर्षित होती है।
0: जी।
1: और यही आकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, हम वही खींचते हैं जो हम सोचते हैं। अगर मन में दया है तो दया मिलती है, अगर मन में सम्मान है तो सम्मान मिलता है, अगर मन में प्रेम है तो प्रेम लौटता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, कह सकते हैं कि प्रेम और सम्मान का आदान प्रदान ही सच्चा जीवन है। जैसे कि यदि हम दूसरों को सम्मान दें तो हमें भी सम्मान मिलेगा।
1: जी हाँ,
0: यदि हम प्यार बांटें तो हमें भी प्यार मिलेगा। मान सम्मान और रिश्ते आपसी लेन देन पर ही टिके होते हैं साथियों। रिश्तों का नियम बिल्कुल स्पष्ट है, जितना प्यार दोगे उतना ही ज्यादा वापस पाओगे।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी सोच भी उसी तरह हमें लौटाती है। अगर हम हर स्थिति को सकारात्मक तरीके से लेते हैं जागृति जी, तो कठिन परिस्थितियों में भी हमें समाधान दिखते हैं।
1: जी हाँ,
0: लेकिन अगर हम केवल शिकायत करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं और चारों तरफ नकारात्मकता फैलाते रहते हैं, तो जिंदगी भी हमें वही अनुभव करवाती है। जो ऊर्जा आप दुनिया में भेजते हैं साथियों, वही दूसरे रूप में बदलकर आपके पास वापस आती है।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम जो देते हैं वही हमें वो वापस मिलता है, तो साथियों जैसे कि हमने कहा था कि मेहनत, अनुशासन, समय और समर्पण, ये सब चीजें हम जीवन को देते हैं। बदले में जीवन हमें सफलता, सम्मान और उपलब्धियां देता है। कशिश, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए श्रोताओं, जो लोग हिम्मत, लगन और जुनून देते हैं वही ऊंचाइयां पाते हैं। अगर हम सिर्फ शॉर्टकट ढूंढे, आलस करें या बहाने बनाए तो जीवन भी हमें सिर्फ असंतोष और पछतावा लौटाता है।
1: बिल्कुल,
0: जब हम ज्ञान बांटते हैं हम और अधिक ज्ञानवान बनते हैं। जब हम बच्चों को शिक्षित करते हैं समाज बेहतर बनता है। जब हम किसी को रास्ता दिखाते हैं हमारी अपनी राह भी उजली हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, शिक्षा हमेशा दो तरफ चलने वाली नदी की तरह है, देने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है।
1: बिल्कुल साथी दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि अभद्रता और नकारात्मकता भी वापस लौट कर आती है, क्योंकि यदि कोई दूसरों से बुरी तरीके से बात करता है, गलत व्यवहार करता है जागृति जी, या फिर किसी कारणवश किसी का दिल दुखाता है, तो अंत में वही खराब भावनाएं उसके जीवन को प्रभावित करती है।
0: हाँ।
1: क्योंकि दोस्तों, खुद बया हुआ कड़वा फल ही वापस लौटकर खुद के पास ही आता है।
0: बिल्कुल,
1: व्यापार में विश्वास, सत्यता और ईमानदारी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यापार ईमानदारी से करता है उनका काम समय के साथ बढ़ता जाता है।
0: बिल्कुल,
1: वहीं दूसरी ओर जो लोग लोभ और झूठ से काम करते हैं उनका पतन निश्चित होता है। हम देखते हैं साथियों कि इसमें आध्यात्मिकता का भी अर्थ है, यानी कि आध्यात्मिक रूप में यह भी नियम सत्य है। साथियों, कर्म, विचार और भावनाएं एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में घूमती है और फिर इंसान के जीवन में वापस आती है। इसलिए ये कहा गया है कि कर्म की गति बड़ी विचित्र है पर न्याय पूर्ण है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि पेड़ हमें बताते हैं आज एक बीज को प्रेम से सींचो, वह हमें छाया, फल और ताजगी लौटाता है। नदियाँ बताते हैं साथियों, जो पानी हम साफ रखते हैं वही पानी हमारी प्यास बुझाता है। आसमान बताता है कि जो उम्मीद हम उड़ान को देते हैं वही हमें ऊंचाइयों के रूप में वापस मिलती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, पूरी प्रकृति देने और पाने के संतुलन

0: पर चलती है। हर समाज में सम्मान देना सीखे, समर्पण देना सीखे और सहयोग देना सीखे। जब हम समाज में अच्छा योगदान देते हैं, लोग हमें भरोसा देते हैं, सहयोग देते हैं और पहचान देते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि किसी की जिंदगी आसान बनाकर हम अपनी जिंदगी को सार्थक बनाते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों रिश्तों में भावनात्मक निवेश होना भी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि रिश्ते बैंक के खाते की तरह होते हैं। जितनी अच्छी बातें, जितनी अच्छी समझदारी और समय हम उन्हें जमा करते हैं, उतना ही विश्वास साथ और मजबूती हमें वापस मिलती है। अगर रिश्तों में कमी, गुस्सा या फिर लापरवाही देंगे साथियों, तो दूरी, गलतफहमी और टूटन जरूर मिलती है। हम देखते हैं कि शब्दों का असर और उनकी वापसी भी होती है। जैसे कि हमारे बोले गए शब्द सिर्फ हवा में नहीं खो जाते, वे सामने वाले के मन पर असर छोड़ते हैं और वही असर किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस आता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए हम कह सकते हैं कि मीठे शब्द यानी अच्छे रिश्ते और कड़वे शब्द यानी कि तनाव और पछतावा। दोस्तों शब्दों की फसल भी काटनी ही पड़ती है। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वही व्यवहार अंत में दुनिया में दिखाती है। अगर आप साथियों लोगों को अवसर देते हैं, जीवन भी आपको नए अवसर देगा। अगर आप लोगों को नीचा दिखाते हैं तो जीवन भी कभी न कभी आपको गिराकर सबक जरूर देता है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि अगर जीवन में खुशहाली चाहिए साथियों तो पहले अपने भीतर खुशियाँ पैदा करनी होगी। अगर शांति चाहिए तो पहले दूसरों को शांति देनी होगी। अगर प्यार चाहिए तो पहले खुद को प्यार देना होगा। नकारात्मकता सिर्फ नकारात्मकता को जन्म देती है कशिश, इसलिए हमें शिकायत से ज्यादा प्रशंसा देना सीखना होगा, घृणा से ज्यादा प्रेम देना सीखना होगा और स्वार्थ से ज्यादा सहयोग देना सीखना होगा। श्रोताओं, जीवन में हम जो भी देते हैं, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारी ऊर्जा, हमारे शब्द, सब किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आते हैं। अगर हम दुनिया में रोशनी फैलाते हैं तो जीवन हमारी दुनिया जगमगा देती है। अगर हम प्रेम बोते हैं कशिश तो रिश्ते खेलते हैं। अगर हम मेहनत बोते हैं तो सफलता मिलती है। और श्रोताओं, अगर हम सपने बोते हैं तो उपलब्धियां मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए जीवन एक प्रतिध्वनि है, हम जो भेजते हैं वही लौट कर आता है। इसीलिए हमेशा अच्छाई, दया, प्रेम, सहयोग और सकारात्मकता देने की आदत डालिए। हमारा हर छोटा कार्य हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन बनकर लौटता है। तो साथियों, आप ये संकल्प लें कि मैं दुनिया को वही दूंगा या दूंगी जो मैं अपने जीवन में पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी हो चुकी हैं, जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से जान पाए हैं कि जीवन में हम जो चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता। बस श्रोता साथियों, हमें अपनी सोच पर बदलाव लाना होता है, क्योंकि जीवन को हम जो देते हैं वापस लौटकर जरूर आता है। तो जैसा कि बातें पूरी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम में युवाओं की आवाज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी हमारे आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी दोस्त जागृति को।
1: नमस्कार।

भाइन बुनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे चलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सच्चा बचपन में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारा एक नया विषय जुड़ता है और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि किस तरीके से खाद्य सुरक्षा हमें बनाकर रखनी है। जी हाँ श्रोता साथियों, हम सभी के दिन की शुरुआत किसी न किसी भोजन से होती है। घर में बना गर्म खाना हो, बच्चों का टिफिन हो, बाजार से लाई गई कोई खाद्य सामग्री हो या शाम की चाय के साथ खाया जाने वाला नाश्ता, खाना हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है। लेकिन श्रोता साथियों, क्या केवल खाना बना लेना ही पर्याप्त है? क्या हम यह भी ध्यान रखते हैं कि जिस भोजन को हम अपने परिवार को खिला रहे हैं वह साफ, सुरक्षित और मिलावट से मुक्त है? अक्सर हम रसोई की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन भोजन को किस तापमान पर रखना चाहिए, कच्चे और पके भोजन को अलग क्यों रखना चाहिए, पैकेट पर लिखी जानकारी को क्यों पढ़ना चाहिए या बाजार से खुले खाद्य पदार्थ खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता और यही छोटी छोटी लापरवाही कभी कभी पेट से जुड़ी समस्याओं और फूड पॉइजनिंग जैसी परेशानियों का कारण बन जाती है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और परिवार के कमजोर सदस्यों के लिए सुरक्षित भोजन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आज कार्यक्रम में हमारी विषय विशेषज्ञ से बातें रहेंगी, स्वच्छ रसोई, सुरक्षित भोजन और स्वस्थ परिवार की क्या नींव है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हमारी बातचीत रहने वाली है स्वच्छ रसोई, सुरक्षित भोजन और स्वस्थ परिवार को लेकर। तो इस विषय को सही और विश्वसनीय तरीके से समझने के लिए आज हमारी बातचीत होने वाली है खाद्य सुरक्षा अधिकारी से। उन्होंने हमें बताया कि घर में भोजन को सुरक्षित रखने से लेकर बाजार से खाद्य सामग्री खरीदने तक किन जरूरी सावधानियों को अपनाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं हमारी यह विशेष विशेषज्ञ बातचीत को और जानते हैं कि हमारी थाली तक पहुंचने वाला भोजन सुरक्षित कैसे रहे और हमारा परिवार स्वस्थ कैसे रहे। सर नमस्कार।

0: जी नमस्कार
1: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
0: जी धन्यवाद
1: सर। जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम सच्चा बचपन से जुड़ रहे हैं और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि किस तरीके से हम हमारी स्वच्छ रसोई, सुरक्षित भोजन और स्वस्थ परिवार की जो नींव है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये बातें हमारी कार्यक्रम में आपसे अवश्य रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपके परिचय से रूबरू हमारे श्रोता साथियों को करवाना चाहूंगी।
0: जी, मेरा नाम हजारलाल अलोरिया है। मैं बांसवाड़ा जिला रसद अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और केंद्र राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी और लोक कल्याणकारी योजना है खाद्य सुरक्षा योजना, उसका संचालन पर्यवेक्षण मेरे और मेरे कार्यालय द्वारा किया जाता है।
1: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया, तो यहीं सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खाद्य सुरक्षा क्या है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है।
0: खाद्य सुरक्षा योजना जो है वो समय पर पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्राप्त हो सके ताकि लोग सक्रिय और स्वच्छ जीवन जी सके।
1: बिल्कुल,
0: ये इसका उद्देश्य है। और जहाँ तक इसकी आवश्यकता की बात है, तो समाज में जो कुपोषण भुखमरी की स्थिति है उससे मुक्ति, अच्छा भोजन अच्छा स्वास्थ्य देता है, तो स्वास्थ्य सुरक्षा,
1: बिल्कुल,
0: आर्थिक स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा, शांति,
1: जी,
0: ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिनके लिए ये खाद्य सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। तो सर, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि घर में भोजन को सुरक्षित रखने के सबसे जरूरी नियम क्या होने चाहिए।
0: भोजन को सुरक्षित रखने के लिए जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नियम निर्धारित किए हुए हैं, उसमें पहला है सफाई, दूसरा है कच्चा भोजन पक्का भोजन उसको सेपरेट रखना, भोजन को सही टेम्परेचर पर गर्म करना और तैयार भोजन को सही टेम्परेचर पर ठंडा रखना। ये मोटे मोटे चार नियम WHO ने निर्धारित किए जिससे भोजन को हम ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते।
1: बिल्कुल। तो सर, घर में कच्चे और पक्के भोजन को अलग रखना क्यों जरूरी है।
0: जैसा कि आप जानते हैं, कच्चा भोजन और पका हुआ भोजन इनको अलग रखना इसलिए भी जरूरी होता है कि एक बैक्टीरिया जो डेवलप होता है तैयार भोजन में, उसका एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो, क्रॉस कॉन्टेमिनेशन ना हो, इसके लिए दोनों को सेपरेट रखा जाना बहुत जरूरी है और रखा जाना चाहिए।
1: बिल्कुल। और यही सर, बचा हुआ जो भोजन होता है उसे सुरक्षित रखने और दोबारा गर्म करने का सही तरीका क्या है।
0: जी जी, भोजन है, बचा हुआ भोजन है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर फ्रीजर में रखा जाना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, और उसको पुनः गर्म करने के लिए एक निर्धारित टेम्परेचर तक उसको गर्म किया जाना जरूरी है ताकि बैक्टीरिया जो डेवलप हुआ है वो नष्ट हो सके। इसके लिए मोटे तौर पर लगभग 74 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको पुनः गर्म किया जाना जरूरी है।
1: बिल्कुल। यही सर, हम देखते हैं कि जो खाद्य पदार्थ हैं, बहुत सी बार हम बाजार से भी खरीदते हैं, तो उन पैकेट वाली चीजों पर हमें किन किन चीजों की जांच करनी चाहिए।
0: देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि आम उपभोक्ता अभी भी इतना अवेयर नहीं है कि इन चीजों पर वो गौर करे। अभी भी उपभोक्ता सिर्फ रेट देख लेता है कि ये चीज सस्ती है तो ये ले लेते हैं, जबकि मैं आपके माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी आप खाद्य पदार्थ पैकेट्स खरीदते हैं उन पे सबसे पहले जो है वो मैन्युफैक्चरिंग निर्माण के संबंध में उसका देखना चाहिए, दूसरा उसकी वैलिडिटी कब तक है, एक्सपायरी डेट कब है, उस पे FSSAI का मार्का है या नहीं है, इंग्रेडिएंट उसमें क्या है वो उस पे मेंशन है या नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और खाद्य पदार्थ यदि वेज नॉन वेज अलग अलग है तो उसपे लोगो ग्रीन कलर का वो मेंशन है या नहीं है। तो मोटे मोटे ये सब चीजें हैं। इसके लिए भारत सरकार ने भी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का गठन किया हुआ है जो इन सब चीजों को मॉनिटर करता है।
1: बिल्कुल। यही सर, हम सभी जानते हैं कि बहुत सी बार खाने पीने की चीजों में मिलावट हो जाती है, तो उसका क्या संकेत होता है, इसकी पहचान हमारे उपभोक्ता कैसे कर सकते हैं।
0: देखिए, वैसे तो लेबोरेटरीज है, लेबोरेटरीज में मोटे तौर पर सारे खाद्य पदार्थों की जांच की जा सकती है, और राज्य सरकार द्वारा भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद स्थापित है हर जिले में पदस्थापित होते हैं, वो भी समय समय पर जांच और टेस्टिंग सैंपलिंग कार्रवाई करते रहते हैं। फिर भी एक आम उपभोक्ता के लिए जो आसानी से जो मोटे मोटे टेस्ट है कि वो घर पे ही खुद कर सकता है, उसके लिए भी FSSAI ने एक बुकलेट जारी की हुई है।
1: बिल्कुल,
0: उसके माध्यम से भी हम चीजों के मोटे तौर पर पहचान कर सकते हैं कि ये जो खाद्य सामग्री है ये मिलावट युक्त है या शुद्ध है। जी, जैसे डेयरी उत्पाद है, डेयरी उत्पाद में दूध में पानी की मिलावट की जांच के लिए ना एक बहुत सीधा सा सिंपल सा एक टेस्ट है कि यदि एक बूंद दूध की किसी चिकनी और तिरछी सतह पर अपन डालेंगे, जैसे स्टील प्लेट वगैरह और इस तरह के, तो यदि शुद्ध दूध है तो वो उसका जो बहने का रहेगा वो बहुत धीरे बहेगा और अपने पीछे एक लाइन छोड़ेगा, सफेद लाइन छोड़ता हुआ जाएगा। जबकि उसमें यदि पानी की मिलावट है तो तुरंत बह जाएगा और उस पीछे कोई इस तरह की कोई लाइन डेवलप होगी नहीं। एक मोटा सा टेस्ट है। इसी तरह से डिटर्जेंट का है, डिटर्जेंट जो है वो भी इसमें मिलाया जाता है जैसा कि सुनने में आता है, तो इसके लिए यदि कांच की बोतल में थोड़ा दूध ले और उतनी मात्रा में यदि उसमें पानी मिला करके उसको यदि हम हिलाते हैं और उसमें घना गाढ़ा झाग बन जाता है और वो लंबे समय तक रहता है तो मिलावट की संभावना उसमें रहती है, अदरवाइज वो इतना वो आएगा नहीं उसमें। ऐसे घी मक्खन का है, टिंचर आयोडीन मिला करके उस घी की क्वालिटी जांच कर सकते हैं। माया खोआ जो है उनको भी मोटे तौर पर एक बार हम हाथ से ही लेकर के दो उंगलियों के बीच से यदि उसको रगड़ के देखें तो वो मुलायम और दानेदार हो रहा है, घी की महक आ रही है, तो वो मोटा मोटा शुद्ध एक तरह से माना जाता है। और यदि वो चिपचिपा हो गया तो संभावना है कि वो शुद्ध नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह से मसालों का है, हरी सब्जियों का भी है, तो ये मोटे मोटे ऐसे टेस्ट है जो हम खुद घर पे ही कर सकते हैं। इसके लिए बस एक अवेयरनेस की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल सर, तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि खुले में बिकने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनको खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है?
0: देखिए, खुले में वैसे तो मैं उपभोक्ताओं से यही अनुरोध करूंगा कि जो सामग्री खुले में बिक रही है कृपया अवॉइड करें। कई बार सस्ते के चक्कर में उनको ले लेते हैं, तो ये हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए उपभोक्ता सामग्री खरीदे। फिर भी यदि खुले में कई सामान खरीद रहे हैं तो उसके खरीदते समय वहाँ की सफाई, खाद्य पदार्थ की ताजगी, वो ढका हुआ है या नहीं है, उसका नमी वगैरह का एक बार देख करके फिर वो सामग्री लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल यही सर, अगर किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट या गुणवत्ता की शिकायत हो तो उपभोक्ता उसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं?
0: जी, जैसा मैंने पूर्व बताया था, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है, उसकी हेल्पलाइन है, राज्य सरकार का एक संपर्क पोर्टल है 181, उस पर लिखित शिकायत हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा मैंने पूर्व बताया खाद्य सुरक्षा अधिकारी है वो उसको डील करेंगे। मेरे विभाग का उपभोक्ता हेल्पलाइन है 1800180630, ये उपभोक्ता हेल्पलाइन है। इसी तरह से व्हाट्सएप नंबर भी है 7230086030, उपभोक्ता इन पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
1: बिल्कुल, यही सर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में आप हमारे श्रोता साथियों को सुरक्षित भोजन के लिए क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मैं सभी उपभोक्ताओं को ये संदेश देना चाहूंगा, अनुरोध भी करना चाहूंगा कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो पूर्णतः भोजन पर निर्भर करता है। हम किस तरह का भोजन ले रहे हैं, भोजन में क्या इंग्रेडिएंट्स हम ले रहे हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स की कितनी मात्रा हम इंटेक कर रहे हैं, इस पे हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो खुले में जो सामान बिक रहा है जैसे मैंने पूर्व में कहा, या दूषित भोजन है उनसे बचने के लिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ है वो जो रखा हुआ है उस स्थान की साफ सफाई, कच्चे पक्के भोजन का सेपरेशन, सही टेम्परेचर पर भोजन को गर्म करना, सुरक्षित भंडारण, ये इन सब चीजों के लिए आवश्यक है। और जैसा मैंने पूर्व बताया कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय उस पदार्थ की एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग, इंग्रेडिएंट्स, FSSAI का लोगो, ये भी देखें तो इससे हमें बहुत बाजार में हम इन मिलावटी चीजों से बचा जा सकता है, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आज अपने कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों को खाद्य सुरक्षा को लेकर ढेर सारी जानकारी से अवगत करवाया है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: धन्यवाद।
1: श्रोता साथियों, आपने सुना कि सुरक्षित भोजन केवल अच्छी तरह खाना बनाने का नाम नहीं है, बल्कि भोजन की खरीदारी से लेकर उसकी सफाई, तैयारी, भंडारण और परोसने तक हर कदम पर सावधानी जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि छोटे से लापरवाही से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन भोजन के मामले में छोटी सावधानी भी बहुत बड़ा बचाव बन सकती है। साफ हाथों से खाना खाना, कच्चे और पक्के भोजन को अलग रखना, भोजन को सही तरीके से ढककर रखना, खराब या संदिग्ध खाद्य पदार्थ से बचना और पैकेट वाली चीजें खरीदते समय उनकी जरूरी जानकारी पढ़ना, ये ऐसे काम हैं जिन्हें हम बिना किसी बड़े खर्चे के अपनी रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा बना सकते हैं। जी हाँ श्रोता साथियों, सुरक्षित भोजन की जिम्मेदारी केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं है। रसोई में खाना बनाने वाले व्यक्ति से लेकर बाजार से सामान लाने वाले सदस्य तक, परिवार के हर व्यक्ति की इसमें भूमिका है। और जब परिवार में सही आदतें बनती है तो वही आदतें बच्चों के व्यवहार में भी आती है। इसलिए आज से जब भी हम अपने परिवार के लिए खाना बनाएं या कोई खाद्य पदार्थ खरीदें, तो एक पल रुककर जरूर सोचें कि क्या यह भोजन साफ है, सुरक्षित है और अपने परिवार के लिए सही है। क्योंकि श्रोता साथियों, स्वस्थ परिवार की शुरुआत केवल पौष्टिक भोजन से नहीं बल्कि सुरक्षित भोजन से भी होती है। तो बातें ढेर सारी हो गई है और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नू खवानू सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो घणे मान स्वागत करो हो अमारे आज के कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बुनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी जह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। भाई बुनो आज अमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है पारंपरिक बीज वागड़नी खेती नी विरासत आत्मनिर्भरता ने बेहतर उत्पादन नु आधार है। अणा विषय माते घणा कानी अमारी आप तक की बात करेंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे कर आपड़ी वाते। भाईन बोनो आप हमवरते रहजो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: शुद्धता और उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खराब बीज से अच्छी फसल या अच्छा बीज हम हासिल नहीं कर सकते।
1: जी हाँ।
0: तो फसल के बढ़वार के दौरान नियमित रूप से ये जाकर देखना जरूरी होता है कि खेत में या पौधों पे कोई कीट या बीमारी तो नहीं लग रही है, है ना, पौधे असमान तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा हो रहा है, कोई बहुत छोटा हो रहा है। तो ये निरीक्षण लगातार करते रहना पड़ता है, जिससे बीज की गुणवत्ता हम सुनिश्चित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही बताया। जैसा कि आपने हमें बताया कि खेत से शुरू होता है बीज उत्पादन, यही श्रेष्ठ पौधे का चयन हमारे किसान भाई बहन कैसे कर सकते हैं?
0: तो किसान भाइयों, बीज चयन के लिए जो श्रेष्ठ पौधों का चयन होता है, तो बीज चयन के लिए केवल हमें दानों का चयन नहीं करना है, बल्कि भविष्य की फसल का हम चयन कर रहे हैं, इस चीज को हमें याद रखना है। तो किसान भाई, जिस पौधे से भी बीज रखते हैं, वो वास्तव में अगले साल की फसल की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। यदि बीज अच्छे होंगे तो फसल अच्छी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों कि श्रेष्ठ पौधों का चयन, तो श्रेष्ठ पौधे के चयन के लिए हमारे नियमित निरीक्षण के आधार पर हमें एक जैसे पौधों का चयन करना है। दूसरा, हमें ऐसे पौधों का चयन करना है जो खेत में सबसे मजबूत स्थिति में हो।
1: जी जी।
0: जिस पे पूरे आकार के फल लगे हों, और यदि एक से अधिक फल लगने वाली फसल है तो जिसमें सबसे ज्यादा फलियां या दाने लगे हैं, इस तरह के पौधों का चयन हमको करना है।
1: बिल्कुल।
0: पौधे के चयन में हमको ये भी ध्यान रखना है कि किस पौधे ने कीटों या बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ के अपनी पैदावार को उत्पन्न किया है।
1: बिल्कुल।
0: तो यदि इस तरह से हम एक पौधे का चयन करते हैं और उससे बीज प्राप्त करते हैं, तो वो स्वस्थ, गुणवत्तापूर्ण, और हम उस बीज को एक शक्तिशाली बीज बोल सकते हैं जो कीटों और बीमारियों से बेहतर लड़ने की क्षमता अपने अंदर रखता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही अब हम जानना चाहेंगे कि बीज शुद्धता की पारंपरिक प्रक्रिया क्या है जो हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान होनी चाहिए।
0: तो किसान भाइयों, बीज शुद्धता की पारंपरिक प्रक्रिया की यदि हम बात करें, तो फसल में मौजूद अवांछित पौधों को हमें निकाल देना चाहिए, जहां जो भी खरपतवार है, या फिर ऐसी फसल जो हमने नहीं लगाई है और जिसकी आवश्यकता या जरूरत हमें नहीं है। तो बीज उत्पादन में ये बीज की शुद्धता को निर्धारित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम ये नहीं करते हैं तो इससे बीज की जो शुद्धता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि कार्यक्रम में हम बीज प्रबंधन को लेकर ढेर सारी बातें आपके माध्यम से जान पा रहे हैं, यही बीज की सफाई और ग्रेडिंग का क्या महत्व है?
0: तो किसान साथियों, बीज की सफाई और ग्रेडिंग की यदि बात करें, तो बीज की सफाई केवल उसकी सुंदरता बढ़ाने का विषय नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: ये उसकी गुणवत्ता का प्रश्न है। जब किसान बीजों की सफाई करते हैं तो वास्तव में वो फसल की गुणवत्ता सुधार रहे होते हैं।
1: जी।
0: तो हमें छोटे दाने, टूटे हुए दाने, या किसी तरह से रोगग्रस्त या कीटों के द्वारा खाए हुए दाने, इस तरह के दानों को अलग करना उसकी ग्रेडिंग का एक हिस्सा है। तो केवल पूरे भरे हुए, विकसित और स्वस्थ और भारी दानों को ही हमको बीज के रूप में उपयोग करना चाहिए। कई किसान पारंपरिक रूप से बीजों को उड़ा के भी देखते हैं, यानी कि हवा में से उनको नीचे गिराते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कोई बीज यदि अंदर से किसी कीट ने खा लिया है और उसका छिलका ही बचा है, तो वो बीज इस तरह से अलग हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ सामान्य रूप से कई सारे किसान साथी पानी में डुबा कर भी बीजों का निरीक्षण करते हैं कि जो बीज अच्छे होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो बीज गुणवत्तापूर्ण नहीं होंगे वो पानी के ऊपर तैरते हैं। तो इस तरह से भी खराब बीजों को और अच्छे बीजों को अलग किया जाता है, और ये ग्रेडिंग के भाग हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अंत में हमारे किसान साथियों के लिए मेरा यही संदेश है कि जिस तरह से आज की परिस्थितियां हैं, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारी खेती पर बहुत तेजी से पड़ रहा है, इस स्थिति में हमें निश्चित उत्पादन पाने के लिए अपने पारंपरिक बीजों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जलवायु के अनुकूल है। ये कम पानी ज्यादा पानी जैसी परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ इनमें अपनी एक बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिससे हमें खेत में दूसरी तरह के अन्य खर्च करने की आवश्यकता कम से कम होती है।
1: बिल्कुल, तो सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका, वागड़ रेडियो का और सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहन बोनो जिमके अवड़े आपड़े वैसे मुनीर जी जुड़े तक हता ने एने आपड़ा ने घणी असल तरीका ते की बताड़ियो है कि आपड़े जे वागड़ क्षेत्र ना किसान भाई बोन है ई पारंपरिक बीजो नु प्रबंधन हरते करी कई कई वातो नु एना ने ध्यान राखवो है, એને સાથે આપણી જે બુને હે એનાની બીજ ચયન મે હું ભૂમિકા હે ને બીજની સફાઈ ને ગ્રેડિંગ નું હું મહત્વ હે। આશા કરું હું કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે વી ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટા પડવાનું। સૂટા તો પડ પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ઓર કિતને મોરે પડા સૂટા।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है गाँव का ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय संस्कृति रोजगार के अवसर को लेकर। जैसा कि अंजलि, गांव की पगडंडियों में केवल मिट्टी की खुशबू नहीं होती, वो हमारी संस्कृति की पहचान बसती है। खेती की हरियाली, कुएं और तालाब, पशुओं की घंटियों की आवाज, लोकगीतों की मिठास, पारंपरिक भोजन का स्वाद, हस्तशिल्प की कला और सादगी भरा ग्रामीण जीवन, ये सब मिलकर गाँव को अपने आप में एक खूबसूरत संसार बनाते हैं। आज जब शहरों की भाग दौड़ से लोग थकने लगे, तब उन्हें गांव का शांत और प्राकृतिक वातावरण आकर्षित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण पर्यटन आज गांव के विकास और रोजगार का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली हैं। लेकिन क्यों न कार्यक्रम के शुरुआती गीत के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गांव के ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को लेकर। जैसा कि अंजलि, ग्रामीण पर्यटन का अर्थ केवल गांव में घूमना नहीं है, इसका अर्थ ये है कि गांव के प्राकृतिक वातावरण, स्थानीय संस्कृति, परंपराओं, खानपान, लोक कला, कृषि और ग्रामीण जीवन को पर्यटकों के अनुभव से जोड़ना। जब कोई व्यक्ति गांव में जाकर खेतों को देखता है, किसान से खेतों के बारे में जानता है, स्थानीय भोजन का स्वाद लेता है, लोकगीत सुनता है या पारंपरिक हस्तशिल्प खरीदता है, तो वो केवल पर्यटन नहीं करता बल्कि गांव की जीवन शैली और संस्कृति को करीब से समझता भी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, भारत के गाँव अपनी विविधता के लिए जाने जाते हैं। हर क्षेत्र की अपनी भाषा, बोली, वेशभूषा, खान पान, लोकगीत, लोक नृत्य और परंपराएं होती हैं। राजस्थान के गांवों की बात करें तो यहां की रंग बिरंगी संस्कृति, लोक संगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक भोजन, मिट्टी के घर, हस्तशिल्प, मेले की अपनी विशेष पहचान है। वागड़ जैसे क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान, लोक संगीत, प्राकृतिक जीवन और स्थानीय कला ग्रामीण पर्यटन को एक अलग पहचान दे सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कह सकते हैं श्रोता साथियों कि ग्रामीण पर्यटन का सबसे बड़ा लाभ यह है किससे गांव में ही रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। अक्सर गांव के लोग रोजगार की तलाश में जागृति जी शहर की ओर जाते हैं। इससे परिवारों से दूरी बढ़ती है और गांव की स्थानीय प्रतिभा का उपयोग गांव में नहीं हो पाता। यदि गांव में पर्यटन से जुड़े छोटे छोटे अवसर विकसित किए जाएं, तो स्थानीय लोगों को अपने ही क्षेत्र में आय का साधन मिल सकता है।
0: जी अंजलि, क्योंकि गांव के घरों को छोटे होम स्टे के रूप में विकसित किया जा सकता है। पर्यटक गांव में रहकर ग्रामीण जीवन का अनुभव ले सकते हैं, वे स्थानीय भोजन खा सकते हैं, खेतों में घूम सकते हैं, गांव की दिनचर्या को समझ सकते हैं। इससे घर के लोगों को अतिरिक्त आय मिल सकती है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही हम देखते हैं कि पर्यटकों को होटल के बजाय वास्तविक ग्रामीण जीवन का अनुभव प्राप्त होता है। स्थानीय भोजन ग्रामीण पर्यटन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन सकता है। आज जब लोग केवल महंगे और आधुनिक भोजन की तलाश में नहीं रहते, बल्कि पारंपरिक और पौष्टिक भोजन को भी पसंद करते हैं। बाजरे की रोटी, दाल बाटी, चूरमा, छाछ, स्थानीय सब्जियां, अचार, पापड़, मठरी और अन्य पारंपरिक व्यंजन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। अगर इन्हें साफ सफाई और अच्छी प्रस्तुति के साथ परोसा जाए श्रोताओं, तो स्थानीय परिवारों के लिए आय का अच्छा साधन बन सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, ग्रामीण महिलाओं की भूमिका भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। महिलाएं घर पर बने पापड़, अचार, मसाले, हस्तशिल्प, कपड़े, पारंपरिक सजावटी वस्तुएं

0: और अन्य स्थानीय उत्पाद तैयार कर सकती है। श्रोता साथियों, स्वयं सहायता समूह इन उत्पादों को संगठित तरीके से तैयार करके बेच भी सकते हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और उनके पारंपरिक कौशल को बाजार भी मिलेगा।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे जागृति जी कि स्थानीय हस्तशिल्प ग्रामीण पर्यटन की पहचान बन सकते हैं। मिट्टी के बर्तन, बांस की वस्तुएं, लकड़ी का काम, पारंपरिक आभूषण, कपड़े, कढ़ाई, चित्रकला और अन्य स्थानीय कलाएं केवल सजावट की वस्तुएं नहीं है, बल्कि वे हमारी विरासत का हिस्सा है। यदि पर्यटक इन्हें गांव से सीधे खरीदते हैं तो कलाकार और कारीगर को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सकता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि ग्रामीण पर्यटन में युवाओं के लिए भी बहुत सारे अवसर हैं। आज के युवा मोबाइल फोन और डिजिटल तकनीक का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे अपने गाँव की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, लोक कला और पर्यटन स्थलों की तस्वीरें, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। इससे गाँव की पहचान दूर दूर तक पहुँच सकती है। युवा स्थानीय गाइड, फोटोग्राफी, डिजिटल प्रचार, ऑनलाइन बुकिंग और पर्यटकों की सहायता जैसे कार्यों से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे साथियों कि पर्यटकों के लिए स्थानीय युवाओं द्वारा गाइड की गई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। गांव की कहानी, ऐतिहासिक स्थान, तालाब, मंदिर, खेत, जंगल, लोक परंपराएं और स्थानीय जीवन के बारे में वही व्यक्ति बेहतर बता सकता है जिसने उस संस्कृति को करीब से देखा हो और जिया हो। इससे पर्यटकों को सही जानकारी मिलेगी और युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, ग्रामीण पर्यटन को कृषि से भी जोड़ा जा सकता है। शहरों में रहने वाले बहुत से लोग खेती की वास्तविक प्रक्रिया को करीब से नहीं जानते। गांव में उन्हें खेत दिखाए जा सकते हैं और खेती के अलग अलग चरणों की जानकारी दी जा सकती है। बीज बोने से लेकर फसल तैयार होने तक की प्रक्रिया, जैविक खेती, पशुपालन, स्थानीय बीज और पारंपरिक कृषि ज्ञान को पर्यटन का हिस्सा बनाया जा सकता है। इससे किसान अपनी खेती से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं और प्राकृतिक पर्यटन जो है उसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण अवसर भी बहुत सारे हैं। गांव के आसपास के तालाब, पहाड़, जंगल, नदी, खेत और प्राकृतिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। पर्यटन का उद्देश्य प्रकृति को नुकसान पहुँचाना नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम करना, कचरे का उचित प्रबंधन करना, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना और स्थानीय पेड़ पौधों की रक्षा करना भी आवश्यक है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें जो चल रही है वो निरंतर ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें तो ग्रामीण पर्यटन केवल बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय बच्चों और युवाओं के लिए भी सीखने का माध्यम बन सकता है, क्योंकि जागृति जी, इससे वे अपनी संस्कृति को समझ सकते हैं और अपनी परंपराओं पर गर्व करना सीख सकते हैं। कई बार आधुनिक जीवन की दौड़ में नई पीढ़ी अपनी लोक परंपराओं से दूर होती जा रही है। यदि लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक कला और स्थानीय ज्ञान को सम्मान के साथ पर्यटन से जोड़ दिया जाए तो यह विरासत आगे भी जीवित रह सकती है। गांव के मेले और त्योहार भी ग्रामीण पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। स्थानीय मेले, पारंपरिक उत्सव, लोक नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटकों को गांव की वास्तविक पहचान से परिचित करा सकते हैं। ऐसे आयोजन में स्थानीय कलाकारों को मंच दिया जा सकता है, इससे कलाकारों को पहचान और आय दोनों मिल सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि ग्रामीण पर्यटन में स्थानीय भाषा और बोली का भी विशेष महत्व है। किसी क्षेत्र की बोली वहाँ की संस्कृति की आत्मा होती है। पर्यटक जब स्थानीय लोगों से उनकी बोली में कुछ शब्द सीखते हैं, लोकगीत सुनते हैं या स्थानीय कहानियां जानते हैं तो उन्हें गांव से जुड़ाव महसूस होता है। इसलिए पर्यटन के माध्यम से स्थानीय भाषाओं और बोलियों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। इस क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रामीण पर्यटन केवल किसी एक व्यक्ति या संस्था का काम नहीं है। इसमें ग्राम पंचायत, स्थानीय परिवार, किसान, महिलाएं, युवा, कलाकार, दुकानदार और स्वयं सहायता समूह सभी की भागीदारी आवश्यक है। अगर गांव के लोग मिलकर तय करें कि उनके क्षेत्र में किस प्रकार का पर्यटन विकसित किया जाए तो विकास स्थानीय जरूरतों और संस्कृति के अनुसार होगा।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही पर्यटकों की सुविधा का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। हम देखते हैं अंजलि कि साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, सुरक्षित रास्ते, शौचालय, उचित जानकारी और आपातकालीन सहायता, ये सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। पर्यटन बढ़ाने से पहले गांव में आवश्यक सुविधाओं को मजबूत करना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, ग्रामीण पर्यटन के विकास में स्थानीय उत्पादों की पहचान बनाना भी महत्वपूर्ण है। गाँव का कोई विशेष भोजन, हस्तशिल्प, प्राकृतिक उत्पाद या सांस्कृतिक कला उसकी पहचान बन सकती है। उसे अच्छी पैकेजिंग और उचित प्रचार के साथ बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को गांव से बाहर के लोगों तक पहुंचाना भी संभव है। यहां सामुदायिक रेडियो की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि सामुदायिक रेडियो गाँव के लोगों को स्थानीय पर्यटन की जानकारी समय समय पर देते रहते हैं। स्थानीय कलाकारों, कारीगरों और पर्यटन से जुड़े लोगों की आवाज को सामने ला सकते हैं। रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से जैसा कि हम हमेशा गांव के पर्यटन स्थल, स्थानीय व्यंजनों, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक परंपराओं की जानकारी श्रोता साथियों आप तक पहुंचाते हैं, इससे हम चाहते हैं कि समुदाय के जो लोग हैं वो इसमें भागीदारी लें, जागरूकता बढ़े ताकि वे भी हमारे साथ जुड़कर अपनी कोई ऐसी चीज है जो समुदाय तक वो पहुंचाना चाहते हैं तो वो हमारे रेडियो से जुड़ सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण पर्यटन का उद्देश्य केवल अधिक से अधिक पर्यटकों को गांव तक लाना नहीं होना चाहिए, असली उद्देश्य ऐसा पर्यटन विकसित करना होना चाहिए जिससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, स्थानीय संस्कृति सुरक्षित रहे, युवाओं और महिलाओं को अवसर मिले और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो।
1: जी हाँ अंजलि, इसके लिए हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारी संस्कृति कोई पुरानी वस्तु नहीं है जिसे केवल दिखाने के लिए रखा जाए। संस्कृति हमारे जीवन का हिस्सा है। लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक भोजन, खेती का ज्ञान, हस्तशिल्प और स्थानीय त्योहार हमारी पहचान है। जब इन्हें सम्मान और उचित अवसर मिलता है तो संस्कृति भी बचती है और रोजगार भी पैदा होता है। और इसी के साथ ग्रामीण पर्यटन गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम हो सकता है। जब गांव का पैसा गांव में ही घूमेगा, स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी और लोगों को अपने क्षेत्र में काम मिलेगा तो अंजलि पलायन की समस्या को कम करने में भी मदद मिल सकती है। छोटे छोटे रोजगार मिलकर गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। आज जरूरत इस बात की श्रोताओं की हम अपने गांव की ताकत को पहचाने। जिस चीज को हम रोजमर्रा का सामान्य जीवन समझते हैं वही किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नया अनुभव हो सकती है। हमारे खेत, हमारी मिट्टी, हमारा भोजन, हमारी कला, हमारी बोली और हमारी परंपरा, इन सब में संभावनाएं छिपी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, ग्रामीण पर्यटन हमें यह संदेश देता है कि विकास का अर्थ अपनी जड़ों को छोड़ देना नहीं, विकास वह है जिसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ अपनी संस्कृति और प्रकृति को भी सम्मान मिले।
1: बिल्कुल।
0: गांव की पहचान को बचाते हुए यदि नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, तो विकास अधिक टिकाऊ और सार्थक हो सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि गांव केवल रहने की जगह नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं का जीवंत पहचान है। ग्रामीण पर्यटन इन तीनों को रोजगार और विकास से जोड़ने का अवसर देता है। श्रोता साथियों, जब गांव का किसान अपनी खेती से, कारीगर अपनी कला से, महिला अपने हुनर से और युवा अपनी तकनीकी क्षमता से आय अर्जित कर सके, तब गांव वास्तव में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। हमें अपने गांव की सुंदरता को जागृति जी केवल देखने की चीज नहीं बल्कि उसकी ताकत के रूप में पहचानना होगा।
1: बिल्कुल,
0: जब स्थानीय संस्कृति को सम्मान मिलेगा, स्थानीय हुनर को बाजार मिलेगा, स्थानीय लोगों को अपने ही गांव में रोजगार मिलेगा, तभी ग्रामीण पर्यटन विकास का माध्यम बनेगा। यही ग्रामीण पर्यटन की असली भावना है कि अपनी मिट्टी से जुड़कर अपनी संस्कृति को बचाकर और अपने ही गांव में रोजगार के नए रास्ते बनाकर हम आत्मनिर्भर बन सकें।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब समय का मान रखते हुए हम आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा हितर मंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नो संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा
0: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर
3: हिंडो स्कूल जा आपड़े अपना भी अपना पूरा करो
4: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है
0: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा
4: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
5: सेहत नु राज हूं है बोन असल आदत ने सही खुराक है बोन जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी तकी करो थोड़ू सी व्यायाम ने तात्काली में जीवन जीवा फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह
4: होवे सेहत है असली धन आपरो आज जीवन नो सहारो है आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा
5: होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
6: नमस्कार साथियों आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर

साथियों, कुछ लोग बहस जीत जाते हैं लेकिन रिश्ते हार जाते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचा लेते हैं इसलिए जीवन भर लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। जी हाँ, हर बार सही होना जरूरी नहीं, कई बार साथ होना ज्यादा जरूरी होता है। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागो रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पाराश्र। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जहाँ हम हमारे जीवन की उन बातों पर चर्चा करते हैं जो हमारे मन और हमारे व्यवहार और हमारे रिश्तों को गहराई से प्रभावित करती है। आज का विषय है हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ। आज हम बात करेंगे कि रिश्तों में जितना जरूरी है या रिश्ते बचाना। श्रोता साथियों, यह सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि हम अपने जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि कई रिश्ते केवल इसलिए कमजोर हो गए क्योंकि दोनों पक्ष अपनी बात मनवाना चाहते थे लेकिन एक दूसरे को समझाना नहीं चाहते थे। घर हो, परिवार हो, दोस्ती हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का संबंध हो या समाज में लोगों के बीच जुड़ाव, हर जगह यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर महत्वपूर्ण क्या है, अपनी जीत क्या रिश्तों की मजबूती। तो बातें इस विषय पर कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों हमारे आपसे ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

कि रिश्तों में जीतना जरूरी है या रिश्ते बचाना। श्रोता साथियों, अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि रिश्ते समान विचारों से नहीं बल्कि आपसी सम्मान से चलते हैं। दो लोग कभी भी हर बात पर एक जैसे सोच नहीं रखते। उनकी पसंद अलग होती है, उनके अनुभव अलग होते हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं और यह जीवन की सच्चाई है। जी हाँ, समस्या तब शुरू होती है दोस्तों, जब हम अपनी सोच को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं और सामने वाले की बात सुनना बंद कर देते हैं। कहते हैं ना कि रिश्ते तर्क से नहीं विश्वास से चलते हैं, और विश्वास तब बनता है जब हम सुनना सीखते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति हर बहस जीतना चाहता है, वो कई बार जीवन के सबसे सुंदर रिश्ते हार जाता है। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि रिश्तों को जीतना हमारे लिए क्यों जरूरी है और हम रिश्तों को छोड़कर खुद जीतना क्यों चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, कई बार हमारी इच्छा सच जानने की नहीं होती बल्कि सही साबित होने की होती है। हमें लगता है कि यदि हमने अपनी बात नहीं मनवाई तो हमारी अहमियत कम हो जाएगी। लेकिन सोचिए कि क्या हर बहस में जीतने के बाद भी मन खुश रहता है? क्या सामने वाले की चुप्पी हमेशा सहमति होती है? कई बार लोग बहस बंद कर देते हैं लेकिन दिल से दूर हो जाते हैं, और यही दूरी धीरे धीरे रिश्तों को कमजोर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, परिवार में सबसे ज्यादा जरूरी किसी चीज की होती है तो वह है रिश्तों की। परिवार में और भी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि रिश्तों की समझ होना, धैर्य की समझ होना, संवाद की समझ होना। क्योंकि परिवार कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां हर दिन कोई विजेता चुना जाए। परिवार वह जगह है दोस्तों जहां लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यदि घर में हर व्यक्ति केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा तो वहां अपनापन कम होगा, तनाव अधिक हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं ना कि पति पत्नी का रिश्ता भी जीत और जिद का है। कई बार पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है। विषय बड़ा नहीं होता लेकिन उसमें सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों? अहंकार होता है। दोनों सोचते हैं कि पहले सामने वाला चुके। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब कोई एक व्यक्ति यह सहने का साहस रखता है। चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। यह हार नहीं होती है, यह रिश्ते के प्रति सम्मान होता है। क्योंकि माफी मांगना हमेशा गलती की निशानी नहीं होता, कई बार यह रिश्तों को महत्व देने की निशानी होता है। इसी के साथ बात आती है, दोस्ती में जीत नहीं भरोसा जरूरी है। क्योंकि सच्ची दोस्ती में यह मायने नहीं रखता कि कौन सही है, बल्कि ये मायने रखता है कि कठिन समय में कौन साथ खड़ा था। यदि हर छोटी बात पर हिसाब रखा जाए तो दोस्ती बोझ बन जाती है। लेकिन यदि रिश्तों में विश्वास और उदारता हो तो वह समय की हर परीक्षा पार कर लेती है। तो श्रोता साथियों, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि रिश्तों में जीतना जरूरी नहीं है, रिश्ते बचाना जरूरी है। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से और भी यही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको ढेर सारी बातों से अवगत करवाया था कि किस तरीके से परिवार में सबसे ज्यादा जरूरत समझ की, धैर्य की और संवाद की होती है, और इसी तरीके से ये सारी चीजें पति पत्नी के रिश्ते में, दोस्ती के रिश्ते में और समाज में भी लागू होती है। अब यही बात करें कि समाज में आजकल दूरियां क्यों बढ़ रही है, तो आज का समाज जो है श्रोता साथियों, उसमें लोग पहले से अधिक जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस बढ़ रही है, लोग बिना पूरी बात समझे निर्णय सुना देते हैं, असहमति को दुश्मनी समझ लिया जाता है। ऐसे समय में रिश्ते बचाने की कला पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हमें ये सीखना होगा कि अलग विचार रखने वाला व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि हर असहमति रिश्ते का अंत नहीं होती, कई बार वही रिश्तों को गहरा समझने का अवसर बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ सम्मान बचा रहता है वहाँ रिश्ता भी बचा रहता है। इसी के साथ कहना चाहेंगे कि बच्चों को बचपन से ही हमें ढेर सारी चीजें सिखानी है। बच्चों को हमें ये नहीं सिखाना चाहिए कि हर हाल में जीतना है, उन्हें ये सिखाना चाहिए कि कैसे सुनना है, कैसे समझना है, कैसे अपनी बात को सम्मान से रखना है, कैसे मतभेद होने पर भी संबंध बनाए रखने हैं। यही जीवन की असली शिक्षा है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर रिश्ते किसी एक बड़ी घटना से नहीं टूटते, वे टूटते हैं अनसुनी बातों से, अनकहे दुखों से, बार बार हुए अपमान से और उस भावना से कि सामने वाला हमें समझना ही नहीं चाहता। इसलिए रिश्तों को बचाने के लिए बड़े प्रयास नहीं बल्कि छोटे छोटे संवेदनशील व्यवहार की जरूरत होती है। जी हाँ, रिश्ते बचाने का मतलब यह नहीं है कि हर अन्याय सह लिया जाए। यदि बात सम्मान, सुरक्षा, सच्चाई या आत्मसम्मान की हो तो अपनी बात दृढ़ता से रखना भी आवश्यक है, लेकिन जहाँ केवल अहंकार की लड़ाई हो वहाँ जीत की जगह समझदारी चुनना बेहतर होता है। क्योंकि दोस्तों, खुद से आप जरा पूछिएगा कि 5 साल बाद यह बहस कितनी महत्वपूर्ण होगी। यदि उसका उत्तर बहुत कम है तो शायद उस रिश्ते को बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, जीवन के अंत में लोग ये याद नहीं रखते कि उन्होंने कितनी बहसें जीती हैं। लोग ये याद रखते हैं कि उनके साथ कौन खड़ा रहा, किसने उनका साथ दिया, किसने उन्हें समझा, किसने कठिन समय में उनका हाथ थामा। रिश्ते की खूबसूरती जीत में नहीं बल्कि अपनत्व में छिपी होती है। इसलिए जब भी जीवन आपको किसी रिश्ते, अपने अहंकार में से एक चुनने की स्थिति में लाए तो एक पल ठहर कर सोचिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी नरमी, एक शांत शब्द और एक कदम पीछे हट जाना उस रिश्ते को बचा सकता है, जो किसी भी बहस की जीत से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो श्रोता साथियों, रिश्ते पेड़ों की तरह होते हैं, उन्हें बढ़ने में सालों लगते हैं लेकिन टूटने में कुछ पल ही काफी होते हैं। इसलिए हर बार ये मत सोचिए कि कौन सही है, कभी ये भी सोचिए कि कौन अपना है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत वह नहीं है जो हमें दूसरों पर मिले बल्कि वह है जो हमें अपने अहंकार पर मिले। और जिस दिन हम यह जीत हासिल कर लेते हैं दोस्तों, यकीन मानिए उस दिन हमारे रिश्ते, हमारा जीवन दोनों अधिक सुंदर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपने रिश्ते को बचाइए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए, क्योंकि परिवार में जब हम रहते हैं तो मनमुटाव तो होता ही है, लेकिन उस मनमुटाव में हम रिश्ते तोड़ दें ये बहुत गलत बात है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते सम्मान, विश्वास और धैर्य की मिट्टी में पनपते हैं। जहाँ केवल अहंकार होता है वहाँ संबंध धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों जहाँ एक दूसरे के लिए जगह होती है वहाँ मतभेद भी रिश्तों को नहीं तोड़ते। इसलिए अपने जीवन में ऐसा वातावरण का निर्माण कीजिए जहाँ लोग आपकी बातों से नहीं, आपके व्यवहार से अपनापन महसूस करें। जी हाँ, जब जीवन की शाम आएगी तब हमें याद नहीं रहेगा कि हम कितनी बहसों में जीते थे, लेकिन यह जरूर याद रहेगा कि किन लोगों ने हमारे जीवन को अर्थ दिया था। इसलिए रिश्तों को जीत और हार की कसौटी पर मत तोलिए, उन्हें समझ, संवेदना और विश्वास की डोर से जोड़िए, क्योंकि कई बार एक रिश्ता बचा लेना 100 बहसें जीत लेने से कहीं बड़ी उपलब्धि होती है। और जो इंसान लोगों के दिलों को संभालना सीख जाता है वह जीवन की सबसे अनमोल कला सीख जाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम की सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी।
अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनू खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े में देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया तकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून।

तो साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।